उदित नारायण और अलका याग्निक के गाए ताल फिल्म के इसी गीत के साथ ही श्रोताओं आज के फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत निर्झर से ज्योति जाटव को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।

0: भारतीय रिजर्व बैंक अब से कुछ देर में द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा मुंबई में ये घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। अप्रैल में रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के लिए पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को विश्वसनीय साझेदार मानता है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से पर्यावरण संरक्षण, सतत जीवन शैली और जैव विविधता की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक संस्कृति का उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण न केवल एक जिम्मेदारी है बल्कि देश की संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न अंग भी है। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं छाया गांगुली की गाई इस गजल के साथ।

0: फाल्गुनी पाठक के गाए इस गीत के साथ ही श्रोताओं, आज का हमारा सबरंग कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र,
1: आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 10:30 होने को हैं और अब आप सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप योशिता पांडे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राजधानी देहरादून और हरिद्वार में झमाझम बारिश हो रही है, जबकि पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में बादल छाए हुए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। इस अवधि में आकाशीय बिजली चमकने और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना भी है। पिछले 24 घंटों के दौरान मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य रहा, जबकि पर्वतीय जिलों में सामान्य से कम तापमान दर्ज किया गया। वहीं अगले एक दो दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हर वर्ष 5 जून को दुनिया भर में यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पृथ्वी को सुरक्षित रखने के संकल्प के साथ मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1973 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर में विभिन्न वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी क्रम में हरिद्वार को अधिक हरित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के उद्देश्य से हरित हरिद्वार अभियान के अंतर्गत जिले में व्यापक स्तर पर पौधारोपण किया गया। उत्तराखंड को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 4 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्य को सम्मानित किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड की ओर से यह पुरस्कार उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक जीएस बुदियाल द्वारा प्राप्त

0: किया गया। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित समारोह में उत्तराखंड को औसत उपभोक्ता आधार वाले राज्यों की श्रेणी में चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों राज्य को सर्वाधिक उपभोक्ता आवेदन, सर्वाधिक रूफटॉप सोलर संस्थापन, सर्वाधिक डिस्कॉम निरीक्षण तथा सर्वाधिक विक्रेता पंजीकरण की श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार मिला है। आगामी मानसून सीजन के दौरान संभावित आपदाओं एवं आपातकालीन परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। प्रदेश में चारधाम यात्रा के लिए संचालित प्रत्येक हेली कंपनी द्वारा यूकाडा को 10-10 घंटे के लिए निःशुल्क फ्लाइंग आवर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी व्यवस्था के तहत अप्रैल माह में अब तक 100 से अधिक श्रद्धालुओं और जरूरतमंद लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है। वहीं पिछले एक वर्ष में विभिन्न आपदा एवं रेस्क्यू अभियानों के 200 से अधिक लोगों का सफलतापूर्वक बचाव किया गया है। यूकाडा के मुख्य प्रबंधक ऑपरेशन अमित शर्मा ने बताया कि चारधाम यात्रा के दौरान बीमार पड़ने वाले अथवा चिकित्सीय आपात स्थिति का सामना कर रहे श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुरक्षित स्थानों और अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष चारधाम यात्रा के दौरान केदारनाथ क्षेत्र से ही 100 से अधिक लोगों को मेडिकल इमरजेंसी के तहत एयर रेस्क्यू सुविधा प्रदान की गई है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। इस प्रणाली के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदन पत्र भरते समय जिस उम्मीदवार की फोटो अपलोड की गई थी वही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा देने आया है। उत्तराखंड की झीलों को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। आवास एवं राज्य संपत्ति विभाग के सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने यह हाल ही में उन्होंने कहा कि नैनीताल जिले के प्रमुख झीलों तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि भीमताल झील के पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण के लिए करीब 25 करोड़ रुपये से अधिक की योजना तैयार की गई है, जबकि नौकुचिया ताल में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार पर लगभग 21 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नैनीताल जिले के हल्द्वानी वन प्रभाग में मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम के लिए एआई आधारित स्मार्ट कैमरा प्रणाली की पहल की जा रही है। प्रभागीय वनाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि नंधौर वन्यजीव अभयारण्य के आसपास स्थित कई गांवों में समय समय पर हाथी एवं अन्य वन्यजीवों की आवाजाही रहती है, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष की संभावना बनी रहती है। इन परिस्थितियों को देखते हुए हल्द्वानी वन प्रभाग द्वारा आधुनिक तकनीक आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को लगाया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:35 हुए हैं। लीजिए अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ज्योति जाटव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में एक ही कलाकार के तहत हम बात करेंगे गायक जगजीत सिंह के बारे में। श्रोताओं, जब आपने पहली बार मोहब्बत की होगी तो वो आपके दिल की आवाज़ बना होगा। जब पहली बार आपका दिल टूटा होगा तो उसकी आवाज़ ने आपका दिल बहलाया होगा। जब आप लंबे सफ़र पर चले होंगे तो उस आवाज़ में आपकी तन्हाई बाटी होगी। श्रोताओं, मशहूर गज़ल गायक जगजीत सिंह ऐसी ही मखमली आवाज़ के जादूगर थे। जगजीत सिंह को कई इतने वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इन वर्षों में गज़ल के शौकीनों ने उन्हें हर रोज़ याद किया। वो कलाकार ही ऐसे थे। आप इश्क में हैं तो जगजीत सिंह को सुनिए, दिल टूट गया हो तो जगजीत सिंह को सुनिए, गम में हो तो सुनिए, भक्ति में सुनिए, डांस में सुनिए। ये उनकी खूबी थी कि उनके चाहने वालों में 15 साल से लेकर 55 साल तक के लोग थे। उनके पास हर उम्र के लोगों के सुनने सुनाने के लिए कुछ था। श्रोताओं, जगजीत सिंह के पास मानो गायकी का डिपार्टमेंटल स्टोर था। आप उसमें अंदर चले जाएं और अपनी पसंद का सामान ले लें, वहां से आप खाली हाथ लौट ही नहीं सकते।

श्रोताओं, जगजीत सिंह फिल्मी दुनिया में पार्श्व गायन का सपना लेकर आए थे। उन दिनों तलत महमूद, मोहम्मद रफ़ी साहब के गीत लोगों की पसंद हुआ करते थे। श्रोताओं, रफ़ी, किशोर, मन्ना डे जैसे महारथियों के दौर में पार्श्व गायन का मौका मिलना बहुत दूर था। तब मशहूर म्यूज़िक कंपनी हिज मास्टर वॉइस को लाइट क्लासिकल ट्रेंड पर टिके संगीत की दरकार थी। जगजीत सिंह ने वही किया। 70 के दशक में उनकी पहली एल्बम रिलीज हुई अनफॉरगेटेबल, जो हिट रही। इस दौरान बासु भट्टाचार्य की फिल्म आविष्कार में उन्होंने गाया बाबुल मोरा नैहर छोटा ही जाए। इसके बाद अगर ये कहावत वाकई कुछ मायने रखती है कि इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, तो जगजीत सिंह इसका

श्रोताओं, जगजीत सिंह ने गजलों को जब फिल्मी गानों की तरह गाना शुरू किया तो आम आदमी ने गजल में दिलचस्पी दिखानी शुरू की, लेकिन गजल के जानकारों की भौहें टेढ़ी हो गई। जगजीत सिंह की शैली शुद्धतावादियों को रास नहीं आई। दरअसल ये

दौर था जब आम आदमी ने जगजीत सिंह, पंकज उधास जैसे सरीखे गायकों को सुनकर ही गजल में दिल लगाना शुरू किया था। श्रोताओं, जगजीत सिंह पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने गजल की प्योरिटी और मूड के साथ छेड़खानी की, लेकिन जगजीत सिंह अपनी सफाई में हमेशा कहते रहे। उन्होंने प्रस्तुति में थोड़े बदलाव जरूर किए हैं, लेकिन लफ्जों से छेड़छाड़ बहुत कम किया है।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार। श्रोताओं, 80 के दशक में जगजीत सिंह का जादू फिल्म इंडस्ट्री पर भी चढ़कर बोलने लगा। 1981 में रमन कुमार निर्देशित प्रेम गीत और 1982 में महेश भट्ट निर्देशित अर्थ को भला कौन भूल सकता है। इन फिल्मों का हर गाना लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। उनकी सहराना आवाज़ दिल की गहराइयों में ऐसे उतरती रही मानो गाने और सुनने वाले दोनों के दिल एक हो गए हों। प्रेम गीत का होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, खलनायक का माँ तुझे सलाम, दुश्मन का चिट्ठी ना कोई संदेश, जॉगर्स पार्क का बड़ी नाजुक है ये मंजिल, साथ साथ का प्यार मुझसे जो किया, सरफरोश का होश वालों को खबर क्या, तुम बिन का कोई फरियाद, वीरजारा का तुम पास आ रहे हो, तरकीब का मेरी आंखों ने चुना है आदि हिट फिल्म गीत रहे। श्रोताओं, जगजीत सिंह को सन 2003 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।

श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आपने साथ साथ प्रेम गीत, तरकीब और दुश्मन फिल्मों के गीत सुने। इसी गीत के साथ ही आज के सुरबहर कार्यक्रम से ज्योति जाटव को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

सुर बहार, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनी भाइयों, कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना महालक्ष्मी अय्यर और साथियों की आवाज़ों में फना फिल्म से। प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा था, संगीत था जतिन ललित का। कार्यक्रम का अगला गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं, उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है कहो न प्यार है। इब्राहिम अश के लिखे हुए ये बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत।

सैनी भाइयों, कहो ना प्यार है फिल्म के इस गीत के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं संजीव दर्शन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये गीत। आवाजें ही उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की। फिल्म का नाम है कितने दूर कितने पास।

सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। उदित नारायण और अनुराधा पोडवाल की आवाजों में ये गीत है मुस्कान फिल्म से। शब्द रचना समीर की है, संगीत है निखिल विनय का।

सैनी भाइयों, कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं बाबुल सुप्रियो का गाया हुआ ये गीत नाम गुम जाएगा फिल्म से। प्रवीण भारद्वाज ने इस गीत को लिखा है, संगीत है आनंद मिलिंद का।

बाबुल सुप्रियो के गाए नाम गुम जाएगा फिल्म के इसी गीत के साथ सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। सैनिक भाइयों अनुमति दीजिए। जय हिंद।

सैनिकों के लिए। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोकसुर। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीत।

गोकुल सिंह बिष्ट और साथियों का गाया हुआ ये कुमाऊनी लोकगीत अभी आपने सुना। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं संगीता ढोंडियाल के स्वर में ये गढ़वाली लोकगीत।

0: सुनील, घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
1: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है।
0: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
1: बल्ब, प्लग, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI।
0: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
1: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
0: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
2: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोकसुर।

श्रोताओ, लोक सुर कार्यक्रम के समापन में अब हम आपको सुनवा रहे हैं नवीन बिष्ट और साथियों का गाया हुआ ये कुमाऊनी लोकगीत।

नवीन बिष्ट और साथियों का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत अभी आपने सुना। इसी के साथ लोकसुर कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद।

नमस्कार श्रोताओं, मेरी पसंद कार्यक्रम के साथ मैं हूं उर्मिला जोशी। आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म निर्माता मुकेश भट्ट पर। बॉलीवुड के ऐसे निर्माता जिन्होंने 80 और 90 के दशक में रोमांस और संगीत को नया रूप दिया, आज इनका जन्मदिन है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं हम उन्हें इस कार्यक्रम के माध्यम से दे रहे हैं। श्रोताओं, 5 जून 1952 को मुंबई में जन्म हुआ मुकेश भट्ट का। पिता नाना भाई भट्ट खुद एक नामी गिरामी निर्माता निर्देशक थे, तो घर से ही उन्हें फिल्मी माहौल मिला। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने अपने भाई महेश भट्ट के असिस्टेंट के तौर पर की। साल 1986 में दोनों भाइयों ने मिलकर विशेष फिल्म्स की नींव रखी और अपनी पहली सफल फिल्म बनाई जुर्म। विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री अभिनीत की फिल्म थी, जिसका श्रोताओं ये गीत रहा सुपरहिट।

शुद्ध साल 1990 में ही मुकेश भट्ट ने गुलशन कुमार के साथ मिलकर फिल्म आशिकी का निर्माण किया, जिसमें नवोदित अभिनेता राहुल रॉय और अभिनेत्री अनु अग्रवाल ने अभिनय किया था। इस फिल्म का निर्देशन उनके भाई महेश भट्ट ने किया। श्रोताओं, इस फिल्म में दो बिल्कुल नए चेहरे थे और मुकेश जी का दावा था कि स्टार नहीं, फिल्म की कहानी और गाने चलेंगे। नतीजा, इस फिल्म के म्यूजिक कैसेट्स के 2 करोड़ यूनिट बिके और ये एक ऐसा रिकॉर्ड रहा जो सालों तक नहीं टूटा। ये गीत आज भी प्रेम की उस

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
2: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। और श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है निर्माता मुकेश भट्ट पर। श्रोताओं, साल 1991 में मुकेश भट्ट ने गुलशन कुमार के साथ मिलकर बनाई फिल्म दिल है कि मानता नहीं। आमिर खान और पूजा भट्ट के अभिनय की मासूमियत इस फिल्म में झलकी तो नदीम श्रवण का संगीत एक बार फिर ऐसा गूंजा कि हर दिल में सज गई महबूब की मोहब्बत की वो खूबसूरत अदाएं।

दिल है कि मानता नहीं फिल्म के बाद मुकेश भट्ट की अन्य फिल्में आईं, सड़क, नाजायज, सर, क्रिमिनल और फरेब। इसके बाद साल 1998 में आमिर खान और रानी मुखर्जी को लेकर उन्होंने बनाई फिल्म गुलाम। इस फिल्म को बड़ी सफलता मिली और मुकेश भट्ट के हौसले को उड़ान। इसके बाद साल 1999 में फिल्म संघर्ष, साल 2002 में बिपाशा बसु और डीनो मोरिया के साथ उन्होंने फिल्म बनाई राज। थ्रिलर, रोमांस और गीतों का वो बेजोड़ संगम इस फिल्म में दिखा कि ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। और श्रोताओं, हर आशिक के जुबान पर सजा ये मधुर गीत।

श्रुतो, राज फिल्म की कामयाबी ने मुकेश भट्ट के लिए कई फिल्मों के रास्ते खोल दिए। जिस फुटपाथ, मर्डर, जहर, कलयुग, गैंगस्टर, वो लम्हे, जन्नत, तुम मिले और राज फिल्म के सीक्वल के साथ गीत संगीत और नए चेहरों का तोहफा उन्होंने बॉलीवुड को दिया। वो एक ऐसे निर्माता रहे हैं जिन्होंने मिड बजट सिनेमा को जिंदा रखा। उन्हें बॉलीवुड का स्टार मेकर कहा जाता है, चाहे 90 के दशक का रोमांस हो या 2000 के दशक का थ्रिल। मुकेश भट्ट ने साबित किया कि फिल्में स्टारडम से नहीं, दृढ़ विश्वास और मेहनत से चलती हैं। उनका मानना है कि फिल्में वो नहीं जो सिर्फ पर्दे पर चलती हैं, फिल्में तो वो हैं जो पर्दे के संग संग दर्शकों के दिल में चलती हैं अपनी कहानी बनकर। तो श्रोताओं, बॉलीवुड को कई बेहतरीन फिल्मों की सौगात देने वाले निर्माता मुकेश भट्ट को आज उनके जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं।

तो श्रोताओ ये थी आज की मेरी पसंद। अपनी पसंद के चंद फिल्मी गीतों के साथ कल इस कार्यक्रम में फिर आपके साथ होंगे। तब तक के लिए अपनी रेडियो सखी उर्मिला जोशी को दीजिए आज के मेरी पसंद कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार। मेरी पसंद, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार।

स्वागत है मैडम आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम घर संसार के आज के अंक में। सभी श्रोता सखियों को आपकी सखी किरण बिष्ट का प्यार भरा नमस्कार। चलिए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत। मैडम आज के दिन के शुरुआत करेंगे हम आज के दिन से, पर उससे पहले आपसे को बताते चलें कि आज के कार्यक्रम में हमारी चर्चा का विषय है पर्यावरण के प्रति बने संवेदनशील, और साथ ही क्षेत्र संकलित बातचीत के क्रम में आज की बातचीत का विषय है पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी जिम्मेदारी, जिसके अंतर्गत हमने अपनी श्रोता बहनों से उनके विचार जाने हैं। और साथ ही आज के विशेष सेगमेंट फैशन फ्राइडे के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे आर्टिफिशियल ज्वेलरी की देखभाल के विषय में, और साथ ही मधुर गीतों से आपका मनोरंजन भी कराएंगे। तो मैंने ज़्यादा देर न करते हुए बात करेंगे आज के दिन की। आज 5 जून है और आज का ये दिन पूरे विश्व भर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का दिन जन जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन पूरे विश्व भर में किया जाता है, ताकि हम सभी पर्यावरण संरक्षण के महत्व को जान सकें और इसीलिए आज के दिन और इसके महत्व को समझें, न कि नज़रअंदाज करें। तो बहनों अब हम बात करते हैं अपनी चर्चा की पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनने की। बहनों हमारी ये भारत भूमि हमेशा से प्रकृति और उसके तत्वों, जल जंगल पशु पक्षी सूर्य चंद्रमा पहाड़ नदी घाटी तारों को पवित्र मानकर उनके प्रति श्रद्धा भाव रखने वाला देश रहा है। प्रकृति के हर एक घटक को ईश्वर का रूप मानकर पूजने की ये परंपरा हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही है, और ये परंपरा प्रकृति और उसके घटकों को सुरक्षित रखने के लिए ही हमारे पूर्वजों के द्वारा शुरू की गई थी, क्योंकि वो जानते थे कि एक न एक दिन ऐसा आएगा जब मानव का लालच उसे प्रकृति से प्राप्त हर उस उपहार का दोहन करने के लिए प्रेरित करेगा और मानव पर्यावरण के प्रति संवेदनहीन हो जाएगा। पर्यावरण के विभिन्न घटकों को पूजने के पीछे उनका एक यह तर्क भी रहा होगा कि प्रकृति ही मानव समेत सभी जीवों का पोषण करती है। प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधनों का पूजन प्रकृति के प्रति संवेदना व श्रद्धा दिखाने का उनका अपना तरीका था, और यही भाव हमने भी अपने पूर्वजों से विरासत में पाया। तभी तो हर आंगन में तुलसी की पूजा, चंद्रमा सूर्य को अर्घ और हर नदी को पवित्र मानकर उसके जल से आचमन करना और पर्वत की विशालता के सामने नतमस्तक होना हमारे संस्कारों में है। लेकिन जिस तरह हर तरफ परिवर्तन हो रहा है, ठीक उसी तरह

0: एक बहुत सुंदर ही संदेश देती है कि वृक्ष वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती है और सूर्य का प्रकाश अपने लिए नहीं फैलाता है। प्रकृति का प्रत्येक तत्व देने की भावना से कार्य करता है। क्या यही कारण है कि प्रकृति केवल संसाधन नहीं है बल्कि एक शिक्षक की भूमिका निभाती है हमारे जीवन में। आज जब दुनिया विकास की तरफ तेजी से बढ़ रही है तब यह और भी आवश्यक हो जाता है हम विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखें, क्योंकि यदि प्रकृति के बेस से हम देखें कि अगर हम प्रगति प्रकृति की कीमत हम आगे बढ़ेंगे तो उसका लाभ भी हमें लंबे समय तक नहीं मिल सकता है। मेरे विचार से तो पर्यावरण का महत्व केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, यह आने वाली पीढ़ी के प्रति हमारी जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है। हम अपने बच्चों को धन शिक्षा और सुविधाएं तो आसानी से दे सकते हैं, लेकिन यदि उन्हें स्वच्छ हवा शुद्ध जल और संतुलित प्रकृति नहीं मिल पाएगी तो जो हमारी विरासत है वो अधूरी ही रह जाएगी। पर्यावरण हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर हम बात करें जब एक वृक्ष कटता है तो केवल लकड़ी ही कम नहीं होती, उसके साथ में जो पक्षी है उनके घर, मिट्टी का संतुलन और भविष्य की जो हरियाली है वो भी प्रभावित होती है। प्रकृति का हर हिस्सा किसी न किसी रूप में हमारे जीवन की श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, इसलिए पर्यावरण का संरक्षण केवल एक आवश्यकता नहीं है बल्कि जीवन के प्रति हमारा सम्मान का भाव भी है। यह समझ है कि हम प्रकृति के मालिक नहीं है बल्कि इसमें हमारी सहभागिता आवश्यक है। इसी पर मैं यह कहना चाहूँ कि पर्यावरण हमारे जीवन की पृष्ठभूमि नहीं है, हमारा अस्तित्व की नींव है। जिस दिन हम यह सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेंगे फिर दिन संरक्षण एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि स्वाभाविक जीवन शैली बन जाएगा। प्रकृति हमारे जीवन का सहारा नहीं है, हमारा आधार है और आधार की रक्षा करना ही बुद्धिमत्ता, कृतज्ञता और हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। जब मनुष्य प्रकृति का महत्व समझ लेता है तब वह पर्यावरण की रक्षा किसी नियम के कारण नहीं करता है मैम, बल्कि वह अपने अस्तित्व के सम्मान के लिए करता है।
1: अनुराधा जी, आजकल हमारे पर्यावरण में जो भी बदलाव हो रहे हैं चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, उसमें आपको क्या लगता है कि हम कितने जिम्मेदार हैं उन बदलावों के लिए?
0: जी मैम, आजकल के पर्यावरण में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जैसे हम देख सकते हैं टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है और अनियमित वर्षा हो रही है, बाढ़, सूखा, जंगलों में आग लगना और प्रदूषण जैसे जैव विविधताएं का कम होना जैसे हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति का संतुलन केवल बड़े उद्योगों या सरकार से नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की छोटी छोटी आदतों से भी प्रभावित होता है। इसमें हम देख सकते हैं अगर हम आवश्यकता से अधिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं या फिर प्लास्टिक या अन्य कचरा फैला रहे हैं अपने आसपास, पानी और बिजली की बर्बादी कर रहे हैं, आवश्यकता से अधिक उसका यूज कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई और हरियाली की उपेक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मनुष्य प्रकृति से अलग तो नहीं है बल्कि उसी का एक हिस्सा है। हम जब हम केवल लेने पर ही ध्यान देंगे और प्रकृति को लौटाने के भाव से कुछ भी नहीं कर रहे हम भूल जा रहे हैं कि उसको भी हमें लौटाना है, तभी यहाँ पे असंतुलन पैदा होता है। प्रकृति हमें जिस प्रकार से वायु, पानी, भोजन और जीवन देती है इसलिए पर्यावरण संरक्षण केवल एक जिम्मेदारी नहीं है बल्कि कृतज्ञता का एक स्वरूप भी है। प्रकृति के साथ हमारा संबंध मैम सिर्फ मालिक और संसाधन का नहीं बल्कि एक सह अस्तित्व का है। जितना संतुलन हम उसे देंगे उतना ही संतुलन वह हमें लौटाएगी। तो मैम पर्यावरण केवल हमारे आसपास मौजूद पेड़ पौधे, नदियाँ और पर्वत ही नहीं है बल्कि हमारे जीवन का आधार है। हम प्रकृति से अलग नहीं है बल्कि उसी का एक हिस्सा है। तो अक्सर हम पर्यावरण में हो रहे बदलावों की बात करते हैं, बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, घटते वन और प्राकृतिक असंतुलन, लेकिन यदि हम ईमानदारी से देखें तो इन परिवर्तनों में कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली और हमारी आदतों की भी भूमिका रहती है। इसमें मैम एक बात मुझे हमेशा से सोचने पे मजबूर करती है कि जिस प्रकार हम सभी अपनी माँ का ख्याल रखते हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं क्योंकि उन्होंने हमें जीवन दिया है, वो हमारा पालन पोषण करती है, हमारी सुरक्षा करती है, हमें सिखाती है बचपन से ही, और इसी प्रकार जैसे हम अपने घर को सजाते हैं, उसको साफ सुथरा करते हैं, उसे इतने प्यार और भाव के साथ देखभाल करते हैं इसकी, तो क्या ये धरती या ये प्रकृति जिस हमें जीवन दिया है हमारी माँ और हमारा घर नहीं है? और यदि हम अपने घर की सफाई की जिम्मेदारी हम किसी और पे नहीं सौंप सकते हैं तो फिर इस धरती को स्वच्छ और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी केवल हम ये क्यों देखते हैं कि हमें सरकार करेगी या कोई मेन संस्था आके करेगी या किसी आस पड़ोस पे हम ज्यादा फोकस करते हैं कि उन्होंने गंदा कर दिया या वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी सिर्फ बाकी लोगों पे छोड़ने के बजाय अगर हम इसकी जिम्मेदारी समझें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा।
1: आपने बिल्कुल सही बात की कि पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी हमें स्वयं उठानी होगी। तो अनुराधा जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं?
0: पर्यावरण संरक्षण का अर्थ केवल बड़े अभियानों से नहीं है, ये उन छोटे छोटे कार्यों से शुरू होता है जो हम प्रतिदिन कर सकते हैं। जैसे हम पानी का बचाव कर सकते, प्लास्टिक का जितना हो सके इतना कम यूज करें,

0: और हम रेगुलर पेड़ लगा सकते और स्वच्छता का ध्यान रख सकते हैं अपने आसपास। तो हमें ये भी समझना होगा कि परिवर्तन हमेशा धीरे धीरे ही आता है, हम अचानक से कोई भी चीज़ नहीं बदल सकते। जो चीज़ चलती आ रही है वो तो अपने हिसाब से चलेगी, लेकिन चेंजेस जो आएंगे अगर हम अपनी तरफ से कुछ चीज़ें धीरे धीरे अपनी आदतों में सुधार करें तो वो चेंजेस आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि अगर हम साल में अगर एक वृक्ष भी लगा रहे हैं तो हमें 10 साल में 10 वृक्ष तैयार हो जाएंगे, ये कितनी बड़ी बात है।
1: बिल्कुल
0: ऐसे समाज अगर सकारात्मक बदलाव और छोटे छोटे प्रयास धीरे धीरे ही जन्म लेते हैं। मैं मत रही यदि हर व्यक्ति ये सोचकर कदम अगर पीछे हटा लेता है कि मैं अकेला ही कैसे चेंजेस ला सकता हूँ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम यहीं पे देखें कि अगर एक व्यक्ति सोचे कि मैं इस क्षेत्र में अपना एक कदम आगे बढ़ाऊं, तो ये धीरे धीरे कितना बड़े परिवर्तन में बदल सकता है ये हम सब समझ सकते हैं। ये पर्यावरण संरक्षण केवल सामाजिक जिम्मेदारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कृतज्ञता का भाव भी है। ये उस प्रकृति के प्रति सम्मान है जो बिना किसी अपेक्षा के हमें हमेशा निरंतर कुछ न कुछ देती रहती है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि पर्यावरण की रक्षा, धरती को बचाने का प्रयास धर्म नहीं है, बल्कि अपने ही भविष्य, अपने आने वाली पीढ़ियों और उस जीवन स्रोत के प्रति सम्मान है जिससे हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है।
1: मैंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अभी आपने अनुराधा धामी के विचार सुने, आइए अब आगे सुनते हैं पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी जिम्मेदारी के विषय में प्रीति सरल के विचार। प्रीति जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति हमारी आने वाली पीढ़ी को हम कैसे जागरूक कर सकते हैं?
2: देखिए, आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए उन्हें केवल इसका महत्व बताना या पर्यावरण संरक्षण की जानकारी देना ही पर्याप्त नहीं है,
1: जी,
2: बल्कि नई पीढ़ी को प्रकृति से जोड़ना और उन्हें पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार सिखाना आवश्यक है। इसके लिए बच्चों में बचपन से ही उनमें प्रकृति के प्रति प्रेम, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करनी होगी। जैसे कि हम जिस हवा को लेते हैं या जिस जल को हम पीते हैं वो हमें पर्यावरण से ही मिलता है। अपने आने वाली पीढ़ी को समझाना होगा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। विद्यालय स्तर पर केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनेक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जैसे कि वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण, प्राकृतिक भ्रमण। तो ये गतिविधियाँ जो है विद्यालय स्तर पर इनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे देखकर अधिक सीखते हैं, इसलिए प्रत्येक शिक्षक और अभिभावक को स्वयं पर्यावरण अनुकूल व्यवहार अपनाना चाहिए, जैसे पानी और बिजली की बचत करना या प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना, कचरे का सही निस्तारण करना, जैसे सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा, तो इनको एक सही ढंग से निस्तारण करना। तो जब बच्चे इन आदतों को अपने घर और अपने आसपास देखेंगे, अपने जीवन में इन्हें अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। तो इस तरह यदि हम बच्चे में प्रकृति के प्रति प्रेम, सम्मान और संरक्षण की भावना विकसित कर दें तो वे भविष्य में पर्यावरण के सच्चे संरक्षक बनेंगे।
1: प्रीति जी, रोजमर्रा के जीवन में ऐसी कौन सी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर हम पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं?
2: जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, पर्यावरण संरक्षण किसी एक दिन का कार्य नहीं है। मान लो एक दिन हमने स्वच्छता अभियान चलाया और दूसरे दिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, एक दिन हमने वृक्षारोपण अभियान चलाया फिर उन वृक्षों को देखा नहीं, तो ये चीज़ें एक दिन का कार्य नहीं है बल्कि हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होना चाहिए। हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में बदलाव करके पर्यावरण की रक्षा और महत्वपूर्ण इसमें योगदान दे सकते हैं। जैसे रोजमर्रा के जीवन में सबसे पहले हमें पानी और बिजली की बचत करनी चाहिए, व्यर्थ नल न खुला न छोड़ें, और वर्षा के जल का संचयन को बढ़ावा देना चाहिए, और अनावश्यक रूप से जैसे हम कभी घर में हो या ऑफिस में हो जो बिजली ना चली रहती है या पंखे चले हैं तो उनको बंद रखें। प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। हमें बाजार जाते समय हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए अपने साथ एक कपड़े का या जूट का हम थैला ले चलें जिसमें कि हम अपनी सब्जियां, फल वगैरह उसी थैले में ला सकें, प्लास्टिक हमारे घर में ना पहुंचे। और साथ ही अपने रोजमर्रा के जीवन में हमें कचरे को अलग रखने से कचरा प्रबंधन आसान तो होता ही है, साथ ही कूड़े के रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने से भी पर्यावरण संरक्षण प्रभावी ढंग से होता है। इसके अलावा जैसे कि हम सभी जानते हैं पैदल चलना या साइकिल चलाना दोनों ही स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है और इससे वायु प्रदूषण भी नहीं होता। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि

0: सार्वजनिक परिवहनों का उपयोग करें। जैसे कि अक्सर हम देखते हैं कि एक ही वर्क स्पॉट पर या एक ही दिशा में जाने वाले व्यक्ति अपना अपना वाहन लेकर जाते हैं, इससे ईंधन भी अधिक खर्च होगा और पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ेगा। तो इस तरह ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे दैनिक जीवन में जिनको हम प्रयोग करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि यदि प्रत्येक व्यक्ति इन सरल आदतों को अपने जीवन में अपनाए तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण बड़े प्रयासों या अभियानों से नहीं बल्कि हमारी अच्छी दैनिक आदतों से शुरू हो। तो इस तरह हम अपने दैनिक जीवन में अगर इन चीज़ों का प्रयोग करें तो निश्चय ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बेहतर कदम हो सकता है।
1: प्रीति जी, आपने हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़े प्रयासों की नहीं बल्कि छोटे छोटे प्रयास भी काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। तो बहनों, ये थे पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी जिम्मेदारी विषय पर सुश्री अनुराधा धामी और श्रीमती प्रीति सलाल के विचार। और हमें उम्मीद है कि हमारी श्रोता बहनें इन बहनों के विचारों से प्रेरणा लेंगी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपना सहयोग देंगी।
3: अरे वाह,
2: पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी जिम्मेदारी विषय पर बहनों अभी आप हमारी ये क्षेत्र संकलित बातचीत सुन रहे थे। आइए इस बातचीत के बाद कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा विराम।
3: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
4: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
5: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें bis.gov.in पर।
2: बहनों, शुक्रवार है और आज के दिन हम फैशन फ्राइडे के अंतर्गत फैशन व स्टाइलिंग के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। तो आज के फैशन फ्राइडे अंक में हम बात करेंगे और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की साज संभाल के बारे में। बहनों, आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बहुत चलन है क्योंकि एक तो ये हमारे बजट में है और दूसरे इसके मनमोहक डिज़ाइन और हर ड्रेस के साथ आसानी से मैचिंग ज्वेलरी मार्केट में उपलब्ध भी होती है और जिसके कारण ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी सभी महिलाओं के बीच लोकप्रिय है। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी की सही देखभाल न करें तो यह अपनी चमक खो देती है, इसलिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी की सही देख की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो बहनों, आर्टिफिशियल ज्वेलरी को किसी भी प्रकार के केमिकल से हमें दूर रखना चाहिए क्योंकि सभी तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरी केमिकल्स के संपर्क में आने से अपना रंग और टिकाऊपन खो सकती है। केमिकल्स की मात्रा चाहे कम ही क्यों ना हो, यह आपकी ज्वेलरी के लिए हानिकारक है। इसलिए जब भी आप परफ्यूम स्प्रे करें या फिर अपने बालों में हेयर स्प्रे करें या फिर कोई भी सीरम आप उपयोग करते हैं तो ध्यान रखें कि आपके द्वारा पहनी हुई ज्वेलरी पर ज्वेलरी उसके संपर्क में ना आए। और मैंने इसके अलावा अपनी ज्वेलरी की चमक लंबे समय तक बरकरार रखने के लिए उन्हें हमेशा एयरटाइट बॉक्स या जिप लॉक बैग में रखें। गहनों को रखने के लिए अलग से एयरटाइट प्लास्टिक बॉक्स सबसे अच्छा होता है। अलग अलग ज्वेलरी के लिए अलग अलग जिप लॉक बैग का प्रयोग करने से जहां उनके एक दूसरे से उलझने का खतरा नहीं होता, वहीं ज़रूरत के समय ज्वेलरी आसानी से मिल भी जाती है। मैंने ज्वेलरी को सुरक्षित रखने के लिए बबल रैप का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि बबल रैप उन्हें बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करता है। जिप लॉक का प्रयोग गहनों को आसानी से अलग करने के लिए भी किया जा सकता है। जिप लॉक गहनों को वातावरण के संपर्क में कम से कम रखने में भी मदद करता है जिससे उनकी चमक लंबे समय तक बनी रहती है और वे आपस में उलझते भी नहीं। बहनों, किसी भी प्रकार के आभूषण के लिए नमी बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होती, इससे उसका सबसे बड़ा दुश्मन कहा जा सकता है। अगर कभी आभूषण गीले भी हो जाएं, तो उन्हें कभी भी गीले स्टोर ना करें, हमेशा उन्हें मुलायम टिश्यू से सुखाएं और फिर जिप लॉक बैग में सुरक्षित रखें। ज्वेलरी को साफ करने के लिए बहनों सबसे अच्छा तरीका है कि रुई या मुलायम टिश्यू पेपर का आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे गहनों की चमक बनी रहेगी और वे बैक्टीरिया मुक्त भी रहेंगे। गहनों पर अगर धूल जम जाती है तो आप एक छोटे मुलायम ब्रश का इस्तेमाल कर धूल हटा सकते हैं। तो बहनों, ये थे कुछ तरीके अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की साज संभाल व देखभाल के बारे में। आइए अब सुनते हैं ये गीत।

मैं उस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी दीपिका पंत। और मनु, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, इस विषय पर आप हमें अपने विचार व्हाट्सएप नंबर 9411001122 पर भेज सकते हैं। आपके सुझावों, आपके विचारों को प्रत्येक माह घर संसार कार्यक्रम के अंतिम अंक में बहनों की चिट्ठी में शामिल किया जाएगा। और मैंने उसी के साथ हमारा आज का घर संसार कार्यक्रम यहीं पर समापन करने की अपनी सखी किरण बिष्ट को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: घर संसार अभी महिलाएं सुन रही थी अपना ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के एक बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। उद्योग संगठन SOCHM ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे।
3: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जन कल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के अगरतला में BSF के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की हर सीमा की भौगोलिक और सुरक्षात्मक चुनौतियां अलग अलग हैं, इसलिए सभी सीमाओं पर एक जैसी रणनीति के बजाय स्मार्ट मॉडल अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अनामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अनामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इससे झलकती है। नागालैंड सरकार ने राज्य में तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी खाद्य उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पान मसाला, सुगंधित और स्वादयुक्त चबाने योग्य उत्पादों के साथ साथ तंबाकू या निकोटीन युक्त किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ पर लागू होता है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक फिसल का 74,274 पर, जबकि निफ्टी 43 अंक लुढ़क का 23,374 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021 तक के राज्य आंदोलनकारियों के लंबित आवेदनों के निस्तारण की अवधि में विस्तार किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के प्रति संकल्पबद्ध होकर कार्य करने का आह्वान किया। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने प्रदेश के सभी विद्यालयों में NCC, NSS और स्काउट गाइड की इकाइयों का गठन करने के निर्देश दिए और डेंगू से संभावित खतरे से निपटने के लिए देहरादून नगर निगम ने लार्वीसाइडल टैंकर अभियान का शुभारंभ किया। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और समावेशी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी कार्यालयों में वर्ष 2021 तक लंबित आवेदनों के निस्तारण की समयावधि में विस्तार किया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने के अनुमोदन के बाद सचिव शैलेश बगोली की ओर से शासनादेश जारी किया गया है। अब शासन द्वारा आवेदन पत्रों के निस्तारण की अवधि भी 24 जुलाई 2026 से 24 सितंबर 2026 तक निर्धारित की गई है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही के लिए शासनादेश की प्रति मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को प्रेषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े सभी वास्तविक आंदोलनकारियों के सम्मान और पहचान के प्रति प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाते हुए पात्र व्यक्तियों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के प्रति संकल्पबद्ध होकर कार्य करने का आह्वान किया है। एक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के लोक पर्व, परंपराएं और जीवन सदैव पर्यावरण संरक्षण के मूल्यों को सुदृढ़ करते रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक प्रयासों की जरूरत बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें एकजुट होकर प्रकृति के संरक्षण की दिशा में भी चिंतन करना होगा। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज अपने शासकीय आवास परिसर में फलदार पौधों का रोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य के निर्माण के लिए पौधरोपण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने लोगों को फलदार पौधे भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि फलदार पौधों का रोपण पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पोषण, सुरक्षा और जैव विविधता को भी बढ़ावा देता है। नैनीताल जिले के हल्द्वानी वन प्रभाग में मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम के लिए AI आधारित स्मार्ट कैमरे लगाने की पहल की गई है। नंदौर वन्यजीव अभ्यारण की सीमा के समीप के संवेदनशील गांव के निकट ये कैमरे लगाए गए हैं। इस परियोजना के तहत स्थापित किए जाने वाले कैमरे अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं। प्रभागीय वनाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि जंगलों के समीप गांव में वन्य जीवों का आवागमन बना रहता है, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष और किसानों की फसलों को नुकसान का खतरा बना रहता है। इसे देखते हुए नए तकनीक के कैमरे लगाए गए हैं।
1: मानव वन्य जीव संघर्ष की रोकथाम के लिए हल्द्वानी वन प्रभाग द्वारा जो हमारे जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं उसमें AI आधारित कैमरा लगाए गए हैं। जो वन्य जीव हैं जैसे हाथी, गुलदार, बाघ, भालू, इनको देख के और तुरंत जो है हमें अलर्ट भेज रहे हैं। इसके अलावा जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम हमने लगाए हैं, तो तुरंत उसको जो है ये अलार्म के माध्यम से लोगों को भी अलर्ट कर रहे हैं।
0: वहीं रेंजर प्रदीप कुमार पंत ने बताया कि ये कैमरे उन गांव में लगाए गए हैं जहां वन्य जीवों का आवागमन लगातार रहता है।
2: छकाता रेंज के अंतर्गत ग्राम तारानवाड़ में यह कैमरा स्थापित किया गया है। ये जानवरों की पहचान करके कोई भी वन्य जीव गाँव की तरफ जब आते हैं, चाहे हाथी हो, भालू हो या टाइगर हो, कोई भी जानवर हो, उस कैमरे की जद वहाँ आ जाता है तो ऑटोमेटिकली उसको पहचान कर एक साइरन के माध्यम से वहाँ आवाज दे देते हैं, लोगों को अलर्ट करता है। और इसकी निगरानी जो है प्रभाग स्तर पर हमारे मास्टर कंट्रोल रूम में ये सीधे जुड़ा हुआ है।
0: ग्रामीण नरेश चंद सुयाल का कहना है कि कैमरे लगाने से उन्हें काफी फायदा हो रहा है।
3: काफी फायदा हो रहा है कि हमारी फसलों को काफी बचत हो रही है। पहले जानवर आता था तो पता नहीं लगता था, काफी नुकसान हो जाता। अब जो है जानवर आता है तो ये थोड़ा साइरन देता है, तो इससे हम अलर्ट भी हो जाते हैं और आवाज सुन के जानवर थोड़ा दूर भी चले जाते हैं। फायदा तो हो रहा है इससे।
0: विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रदेश के सभी विद्यालयों में एनसीसी, एनएसएस और स्काउट गाइड की इकाइयों का गठन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रत्येक छात्र छात्रा को अनुशासन, नेतृत्व और सामाजिक सेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिल सके। उन्होंने विद्यालयों में ड्रॉप आउट दर को शून्य करने के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करने पर भी विशेष बल दिया। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में आयोजित विभाग की समीक्षा बैठक में डॉक्टर रावत ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और छात्र केंद्रित शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने और पात्र विद्यार्थियों को इसका अधिकतम लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों के उच्चीकरण, डी श्रेणी विद्यालयों के निर्माण कार्यों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, विकास खंडवार मात्राकरण और शिक्षकों की पदोन्नति संबंधी मामलों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। मॉनसून सीजन और डेंगू के संभावित खतरे को देखते हुए नगर निगम देहरादून ने विशेष अभियान शुरू कर दिया है। महापौर सौरभ थपलियाल ने पहले चरण में निगम परिसर में लगभग

0: लगभग 15 लार्विसाइडल टैंकरों को विभिन्न क्षेत्रों और वार्डों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये टैंकर शहर के संवेदनशील क्षेत्रों, जल भराव वाले स्थानों, नालों, खाली भूखंडों, सार्वजनिक स्थलों और अन्य संभावित मच्छर प्रजनन क्षेत्रों में नियमित रूप से लार्विसाइडल छिड़काव और उपचारात्मक कार्यवाही करेंगे। महापौर ने कहा कि डेंगू जैसी मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए नगर निगम शहरवासियों के स्वास्थ्य संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है।
1: डेंगू जो है वो पूर्व के सालों में भी और महामारी के तौर पे फैलता आया है। इसको रोकथाम के लिए नगर निगम ने जो एंटी डालवा अपने टैंकर से उनको रवाना किया है। ये वार्डों में जाके और जहाँ जहाँ पे भी पानी वगैरह इकट्ठा होगा, जहाँ पे भी लार्वा पनपने की उम्मीद होगी, ऐसी जगहों पर जो केमिकल्स का छिड़काव हम लोगों के द्वारा किया जाएगा, जिससे कि लार्वा उत्पन्न ना हो सके और डेंगू ना फैल सके। डेंगू के लिए हमने फॉगिंग जो है वो पूरे अपनी गली गली मोहल्लों में हमारी फॉगिंग भी हो रही है और साथ साथ एंटी लार्वा टैंकर्स भी जा रहे हैं। इसके अलावा हम प्रचार प्रसार भी जो है वो डेंगू के लिए और लोगों को समझाने का काम भी कर रहे हैं।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है।
0: आगामी मॉनसून सीजन के दौरान संभावित आपदा और आपातकालीन परिस्थितियों के प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। प्रदेश में चारधाम यात्रा के लिए संचालित प्रत्येक हेली कंपनी की ओर से यूकाडा को 10-10 घंटे के निःशुल्क फ्लाइंग आवर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनका उपयोग आपदा प्रबंधन और राहत व बचाव कार्यों में किया जा सकता है। वर्तमान में चारधाम यात्रा में संचालित 8 हेली से कंपनियां कुल 80 घंटे के निशुल्क फ्लाइंग आवर्स उपलब्ध कराए गए हैं। इन घंटों का उपयोग मेडिकल इमरजेंसी, हवाई रेस्क्यू और दुर्गम क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। यूकाडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि इसका उद्देश्य मेडिकल इमरजेंसी, उच्च हिमालय क्षेत्रों में फंसे यात्रियों की सहायता और राहत व बचाव कार्यों के लिए त्वरित हवाई सेवाएं उपलब्ध कराना है।
3: इस संबंध में हम लोगों ने अपने टेंडर डॉक्यूमेंट में या जो बिड की गई थी उसमें एक क्लॉज रखा गया था जिसमें 10 hours पर कंपनी हम लोग इस तरीके के मिसलेनियस जो टास्क होते हैं हमारे पास में इमरजेंसी सिचुएशन होती है मेनली, जिसमें अगर हम बात करें तो कार्डियक अरेस्ट होना है या किसी भी किस्म की हाई ऑल्टीट्यूड से रिलेटेड इशूज या एज लोगों को कई बार मेडिकल इमरजेंसी में हमें वापस नीचे लाना होता है हाई ऑल्टीट्यूड एरिया से, तो इस संबंध में ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है और कहीं ना कहीं अभी भी अगर हम बात करें तो कई सारे लोगों की जान बचाने में इन आर्स का एक महत्वपूर्ण योगदान है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021 तक के राज्य आंदोलनकारियों के लंबित आवेदनों के निस्तारण की अवधि में विस्तार किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों के पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के प्रति संकल्पबद्ध होने का कार्य करने का आह्वान किया। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने प्रदेश के सभी विद्यालयों में एनसीसी, एनएसएस और स्काउट गाइड की इकाइयों का गठन करने के निर्देश दिए और डेंगू के संभावित खतरे से निपटने के लिए देहरादून नगर निगम ने लार्वी साइडल टैंकर अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं जफर गोरखपुरी के कलाम के साथ। फनकार हैं पंकज उदास।

पंकज उदासी अभी आप सुन रहे थे जफर गोरखपुरी का कलाम। सुगम संगीत कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं फाल्गुनी पाठक का गाया ये नगमा।

श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। कार्यक्रम के समापन में आइए अब सुनते हैं जावेद अख्तर की लिखी हुई गजल, आवाज है लता मंगेशकर की।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
2: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1300वीं कड़ी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
3: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चकुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
3: और डोंडी दोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
3: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना, कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
2: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शैडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
3: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
2: जी,
3: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियाँ हैं।
2: जी,
3: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
2: जी।

0: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
1: श्रोताओ, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गाँवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है। मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
0: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
1: क्या बात है।
0: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
1: क्या बात है। श्रोताओं, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
0: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं, ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
1: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
0: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है। यहाँ आज भी लोग पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं। इस डाकघर की स्थापना 5 नवम्बर 1983 को हुई थी।
1: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओ, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है। यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
0: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं, तो उन्हें NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
0: कक्षा 4 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है।
2: नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: महाराज की जय। महाराज की जय। महाराज की
3: जय। बहुत अच्छे से शासन करी।
4: खास ऐलान। शांत।

0: परेशान। आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
1: हाँ महाराज, महाराज बताइए, हम आपकी
0: सेवा में सदैव
1: तत्पर हैं। हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
0: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
2: जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका?
0: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
3: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
4: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
0: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
4: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
5: जी महाराज, बहुत कृपा।
6: महाराज की जय हो।
7: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
0: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
4: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
0: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
1: महाराज, ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
0: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
1: इसमें संदेह नहीं है महाराज, कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़ कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़ कर थे।
0: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
1: धन्यवाद महाराज।
4: अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
1: भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
3: हुआ? मेरे साथ मिला,
1: मुझे भी
3: कैसे हो सकता है?
1: क्या क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली? तुम
3: कैसे हो सकता है?
1: आया था
3: राजा, नकली हीरा दे सकता है?
1: नकली कैसे आ गया? अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया,
3: राजा
1: सभी ने बोला कि नकली है।
0: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
1: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो हम पूछ लें महाराज।
0: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
1: धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरो की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली है महाराज।
0: क्या? और कोई शंका?
1: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
0: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली

0: और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
1: महाराज की
2: जय।
1: महाराज की
2: जय।
1: महाराज की
2: जय।
0: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।

तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्ता पूर्ण बाल शिक्षा से

0: निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का ये प्रमुख त्योहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के चार दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिस कर आँच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

0: मुंह से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन काम

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1300वीं कड़ी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजे हैं, प्रस्तुत हैं उत्तराखंड के लोकगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं जानकी ढोंढियाल का गाया ये लोकगीत।

जानकी ढोंडियाल के स्वर में अभी आप ये लोकगीत सुन रहे थे। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रहलाद सिंह मेहरा का गाया ये लोकगीत।

0: तारा सिंह लोधियाल के गाए इस लोकगीत के साथ ही उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर-18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
1: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
3: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: स्थायी जमा सुविधा की

0: 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और एटीएम में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने आरबीआई के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से CAPF कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
2: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी CAPF में जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प पड़ने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में CAPF के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा

0: तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
1: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे यस एंड माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
2: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरणीय संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
3: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं, लोकल फॉर वोकल है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
4: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक

0: सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामेगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। 800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब किसान भाई सुनेंगे खेती की बातें। किसान भाइयों, आज की जानकारी का विषय है पशुओं में समय से टीकाकरण कराएं। जानकारी दे रही हैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह।
2: पशुपालक भाइयों, किसी भी मौसम का अत्यधिक प्रकोप स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जैसे अत्यधिक वर्षा, गर्मी या ठंड में पशुओं वो मनुष्यों में एक विशेष प्रकार का तनाव पैदा हो जाता है, जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तथा विभिन्न प्रकार के जीवाणु व विषाणु शरीर को बीमार बना देते हैं। अनेकों प्रकार के जीवाणु तथा विषाणु जनित बीमारियां हैं जो गाय एवं भैंसों को प्रभावित करती है। इन बीमारियों से पशु की उत्पादन क्षमता तो प्रभावित होती ही है, पशु की मृत्यु भी हो सकती है। किंतु यदि इन बीमारियों के प्रति समय पर टीकाकरण करा ले तो हम पशुओं को इन बीमारियों से बचा सकते हैं और आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं। जीवाणु जनित रोग संक्रामक होते हैं। संक्रामक रोग के उपचार के लिए सर्वप्रथम रोगग्रस्त पशु को अलग कर लें। लक्षणों के अनुसार शीघ्र उपचार प्रारंभ कर दें। उचित पदार्थ को प्रयोगशाला में पुष्टिकरण के लिए भेजें और पुष्टि के अनुसार विशेष उपचार कराना चाहिए। मृत पशुओं के शरीर, उनके आसपास की बिछावन एवं उनका चारा आदि को उचित प्रकार से निस्तारित करें। शेष पशुओं को टीका लगाएं एवं पशुशाला की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गलगोटू हेमरेजिक सेप्टिसीमिया। गलगोटू पशुओं का एक जानलेवा संक्रामक रोग है जो प्रायः गायों एवं भैंसों में वर्षा ऋतु में फैलता है, जिसमें मृत्यु दर अधिक होती है। यह रोग प्रायः एशिया के उन भागों में जहां गर्मी अधिक होती है तथा वातावरण में काफ़ी नमी रहती है मुख्य रूप से पाया जाता है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में तथा पानी जमाव वाली जगहों में इन बीमारी के जीवाणु ज़्यादा समय तक रहते हैं। इस रोग से गाय, भैंस, ऊंट अत्यधिक ग्रसित होते हैं और कभी कभी सूकर और घोड़ा इस रोग के शिकार हो जाते हैं। प्रायः रोग मैदानी भागों में होता है। लक्षण तेज ज्वर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, चलने में परेशानी, कमजोरी, गर्दन के दोनों ओर एवं नीचे सूजन, छूने में गर्म सूजन के कारण घुर घुर की आवाज़ आती रहती है, पशु के मुँह से लार निकलती रहती है, गले में सूजन के कारण सांस लेने में पशु को कठिनाई होती है, जीभ बाहर निकल आती है, हवा की नली के ऊपर एवं आसपास सूजन आने से सांस की नली बंद हो जाती है और दम घुटने से पशु की मृत्यु हो सकती है। प्राथमिक उपचार एंटीबायोटिक्स HS एंटीसीरम। मृत पशु को गड्ढे में गाड़ देना चाहिए अथवा जला देना चाहिए। बचाव मौसम मानसून से पूर्व गलगोटू का टीका लगा लें। लंगड़िया ब्लैक क्वार्टर। लक्षण रोग मुख्यतः वर्षा ऋतु में होता है। इस रोग में पशु लंगड़ाने लगता है, पैरों पर सूजन, तीव्र ज्वर, सूजन गर्म होती है और दुखती है, जिसके अंदर हवा भी भरी रहती है। सूजन को दबाने पर चर चर की आवाज़ होती है। सूजन में चीरा लगाने पर हवा मिला बदबूदार खून बाहर निकलता है। प्राथमिक उपचार बीक्यू एंटी सीरम एंटीबायोटिक, सूजन में टिंचर आयोडीन या मर्क्यूरोक्रोम लगाना चाहिए, सुरक्षात्मक टीके भी लगवाएं। बचाव मानसून से पूर्व पशुओं में टीकाकरण करवा लें। विषाणु सभी रोग कारकों में सबसे छोटे होते हैं, यह शरीर की जीवित कोशिकाओं में ही अपनी संख्या बढ़ाते हैं। जीवित कोशिकाओं के बाहर ये मर जाते हैं, इनके विरुद्ध कोई औषधि नहीं होती है। विषाणु से प्रभावित पशु को लक्षणों के आधार पर उपचारित करते हैं। खुरपका मुंहपका खुरिया फुट एंड माउथ डिजीज। लक्षण पशु को तेज बुखार आता है, चारा खाना बंद कर देता है, बार बार पानी पीता है, मुख से लार बहुत निकलती है, मसूड़े जीभ के नीचे ऊपर तथा गाल के अंदर छालों से चारा खाना कठिन हो जाता है, खुरों के बीच में छालों के कारण पशु लंगड़ाता है या चाल नहीं सकता, छालों में पानी या श्राव निकलता है, उपचार न करने तथा गंदे स्थान पर पशु रखने पर खुरों में कीड़े पड़ जाते हैं, रोगग्रस्त पशु का दूध

0: बहुत कम हो जाता है या कभी दुग्ध बंद भी हो जाता है। एक बार खुरपका मुंहपका हो जाने पर पशु जीवन भर के लिए कमजोर एवं अनुत्पादक हो जाता है। प्राथमिक उपचार, एंटीसेप्टिक से छालों घावों का नियमित सफाई करना, खुरपका मुंहपका वैक्सीन के टीके वर्ष में दो बार 6 माह के अंतराल पर लगाना, प्रभावित पशु को के मुंह में 0.1% पोटाश के घोल से धोना चाहिए, खुर के घावों को फिनाइल के तनु घोल से घोल धोकर एंटीसेप्टिक मलम लगाना चाहिए। रेबीज लक्षण, इस रोग के प्रकोप दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप लकवा, पशु का नीचे का जबड़ा नीचे लटक जाता है और मुंह आधा खुला रह जाता है, मुंह से लार निकलती रहती है, पशु ना तो अन्य पशु को काटता है और ना अन्य पशु को काटने की इच्छा रखता है, पशु की मृत्यु 2 से 3 दिनों में हो जाती है। रौद्र या प्रचंड रूप, जानवर चिड़चिड़ा हो जाता है, अन्य पशुओं एवं मनुष्यों को काटता है, कान खड़े रहते हैं, भयानक रूप से गर्दन को खींचकर रंभाना एक मुख्य लक्षण है, पशु जमीन पर मृत जानवर की तरह पड़ा रहता है और पुनः क्षण भर में खड़ा हो जाता है, लार बहुत निकलती है, बाद में पशु लकवा से जकड़ जाता है तथा 2 से 3 दिनों में मृत्यु हो जाती है। प्राथमिक उपचार, जिस स्थान पर पागल कुत्ते ने पशु को काटा है वहां से अच्छी प्रकार खून को निकाल दें तथा पोटाश के पानी से साफ कर दें। सिल्वर नाइट्रेट कार्बोलिक एसिड से दाग लगाना अच्छा रहता है। कुछ उपलब्ध ना होने पर कपड़े धोने के साबुन से घाव को 3-4 बार धोएं। पागल कुत्ते द्वारा पशु को काटने के बाद तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और एंटी रेबीज के 6 टीके लगाएं, जाने आवश्यक हैं। यह टीके 0 दिन यानी काटने के दिन 3रे, 6ठे, 14वें, 28वें तथा 90वें दिन पर लगते हैं। PPR भेड़ बकरियों का प्लेग, PPR भेड़ एवं बकरियों में फैलने वाला घातक संक्रामक रोग है, क्योंकि यह स्वस्थ पशु में तेजी से संचारित होता है, एक ही समय पर अत्यधिक पशुओं को मार डालता है। कारण यह रोग विषाणु मिक्सोवायरस समूह के द्वारा पैदा होता है। संचारण प्रसार, रोगी पशु के दुष्ट आहार, पानी, मल आदि के संपर्क में आए स्वस्थ पशुओं में यह रोग तेजी से फैलता है। समय PPR पूरे वर्ष पशुओं को प्रभावित करता है, परंतु इसका प्रभाव जाड़ों में जब तापमान कम होता है अधिक होता है। सामान्य लक्षण, पशु में तीव्र ज्वर 104 डिग्री से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ रोग प्रारंभ होता है, पशु स्वस्थ कमजोर, आहार के प्रति अरुचि, जुगाली बंद करना, आंखें लाल, आंख, मुंह, नाक से पानी बहना आदि लक्षण दिखलाता है। ज्वर कुछ समय कम होते ही मुंह के अंदर मसूड़ों व जीभ पर लाल लाल दाने फूटकर घाव बनकर दिखाई देते हैं, जिसमें शीघ्र ही जलन पैदा हो जाती है, आंखों में कीचड़ आने लगता है और तेज बदबूदार खून व आव से मिश्रित दस्त आने लगते हैं। धीरे धीरे दस्त की मात्रा व घाव में सड़न बढ़ती जाती है और पशु अत्यधिक सुस्त होकर मर जाते हैं। रोकथाम, क्योंकि यह अत्यंत घातक रोग है, यह अपने पशु स्वस्थ पशु को बचाए रखने के लिए निम्नलिखित उपाय रखने चाहिए। पशु बाड़ों को साफ एवं सूखा रखें, कभी कभी फिनाइल या भूजा चूना प्रयोग करें, दूषित भोजन व पानी ना दें, प्रत्येक पशु को स्वस्थ व ताज़ा पानी दें, दूषित चारागाहों अथवा यदि कहीं आसपास रोग की संभावना हो तो वहां अपने पशुओं को ना जाने दें व पशुओं का आवागमन रोक दें। बाहर से आए अथवा नए खरीदे गए पशुओं को 15 से 20 दिन अलग रखें के बाद ही अपने स्वस्थ पशु समूह में मिलाएं। संदिग्ध रोगी पशु को तत्काल अलग कर उसकी चिकित्सा व देखभाल कराएं। रोग से मृत पशु को कम से कम 2 मीटर गहरे गड्ढे में बूझे चूने के साथ गाड़ दें अथवा मृत स्थान पर ही जला दें। दूषित मांस का सेवन ना करें। रोगी पशु के संपर्क में आई वस्तुओं जैसे चारा, पुआल, रस्सी को जला दें। जंजीर, बर्तन आदि को पानी में उबालने के बाद ही प्रयोग करें। उक्त स्थान को भली प्रकार सफाई, पुताई एवं फिनाइल चूना के प्रयोग से 1-2 दिनों बाद ही प्रयोग करें। टीकाकरण, इस बीमारी की रोकथाम हेतु नियमित रूप से स्वस्थ पशु को 4 माह की आयु पर निकटतम पशु चिकित्सालय या पशु औषधालय के माध्यम से विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई वैक्सीन से 3 वर्ष में एक बार टीकाकरण अवश्य करवाएं। अतः पशुओं में समय से टीकाकरण करवाएं और अपने पशुओं को घातक रोगों से बचाएं।
1: पशुओं में समय से टीकाकरण कराएं, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रतिभा सिंह की वार्ता। इसी के साथ खेती की बातें कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं।

यह आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। प्रस्तुत है रूपरेखा। हमारे केंद्र से आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है शाम 5 बजे। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कुमावनी लोकगीतों का कार्यक्रम शैल स्वर प्रसारित होगा शाम 5:05 पर। आज के कलाकार होंगी ज्योति उप्रेती। युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी प्रसारित होगा शाम 5:15 पर। आज इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा विश्व पर्यावरण दिवस। साथ ही सिने जगत में आप जानेंगे अभिनेता सुनील दत्त के बारे में। साथ ही इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे रुखसार खातून की वार्ता। विषय होगा जलवायु परिवर्तन गंभीर चुनौती। उत्तरायण कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:45। आज इस कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी विश्व पर्यावरण दिवस पर। साथ ही इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे पर्यावरण संरक्षण हेतु बच्चों में जागरूकता विषय पर क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता। भक्ति संगीत का आनंद लीजिएगा संध्या 6:41 पर। आज हम आपको सुनवाएंगे शर्मा बंधु और उदित नारायण के गाए भक्ति गीत। ग्राम जगत कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे 7 बजे। आज इस कार्यक्रम में आज की बातें होंगी फसलों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव विषय पर। साथ ही इस कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी औषधीय पौधों की खेती से पर्वतीय क्षेत्र में रोजगार विषय पर। मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरस प्रसारित होगा रात्रि 8 बजे। सुगम संगीत का आनंद एक बार फिर आप लेंगे रात्रि 10 बजे। हमारी सायंकालीन सभा में फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 7:40 पर। कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत। रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम में। रात्रि 9:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपके अनुरोध पर के तहत। और रात्रि 10:30 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम में। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार। श्रोताओं, आज के फनकार हैं अभिनेत्री रंभा। 5 जून साल 1976 को आंध्र प्रदेश में जन्मी रंभा ने मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही तेलुगु फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की। बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म रही साल 1993 में आई जल्लाद। मिथुन चक्रवर्ती के साथ इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो फिर थमा नहीं। जुड़वा और बंधन फिल्मों ने उनके इस सफर को आगे बढ़ाया। आइए कार्यक्रम में पहला गीत सुनते हैं उनकी फिल्म बंधन से।

शुधु रंभा की चर्चित फिल्मों में शामिल हैं फिल्म जंग, दानवीर, जुर्माना, घरवाली, बाहरवाली, क्रोध, बेटी नंबर वन, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, प्यार दीवाना होता है और मर्द। हिंदी फिल्मों के अलावा तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और भोजपुरी सहित 8 भाषाओं में उन्होंने 100 से भी ज़्यादा फिल्में की हैं। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उनकी फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता से।

शुतुरंभा की अदाकारी में कभी सादगी भरा रोमांस नजर आए तो कभी डांस सॉन्ग में गजब की एनर्जी। साथ ही उनकी कॉमिक टाइमिंग भी दर्शकों को बेहद पसंद आई। मल्टी स्टारर फिल्में हों या सोलो, वो अपनी सादगी भरे मुस्कान से अपनी छाप छोड़ ही जाती हैं। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और आइए अब कार्यक्रम के समापन में सुनते हैं उनके हिट फिल्म जुड़वा का ये गीत।

0: चलती है क्या ना से पारा,
1: चलती है क्या।
2: जुड़वा फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार अब संपन्न हुआ। आज की फनकार थी अभिनेत्री रंभा। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बजे लीजिए सुनिए सदाबहार फिल्मी गीत। सदाबहार फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उर्मिला जोशी। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम सजा है संगीतकार विजू शाह के संगीत से सजे मधुर गीतों से। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें शुभकामनाएं देते हुए आनंद लेते हैं उनके मधुर संगीत का। कार्यक्रम में पहला गीत उनके संगीत से सजा हुआ हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मोहरा से। पंकज उधास और साधना सरगम की आवाजें हैं। गीत लिखा है इंदिवर ने।

शुद्ध मोहरा फिल्म के गीत विजू शाह के करियर में मील का पत्थर साबित हुए। विजू शाह एक ऐसे संगीतकार के रूप में हिंदी सिनेमा में उभर कर आए जिन्होंने ऑर्केस्ट्रा के दौर में अपने एक अलग संगीत से अपनी पहचान बनाई। पिता संगीतकार कल्याण जी से उन्हें संगीत तो विरासत में मिला, लेकिन उन्होंने अपनी विशिष्ट शैली से हिंदी फिल्म संगीत को एक नई चमक दी। अगला गीत आइए सुनते हैं उनका संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म विश्वात्मा से। साधना सरगम की आवाज है, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

शुद्ध विजू शाह के संगीत की अनोखी शैली ने 90 के दशक में ऊर्जा और बीट्स का ऐसा संगम दिया जो हर युवा को जोश से भर गया। विजू शाह ने साबित किया कि तकनीक और मधुरता एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि अच्छे संगीत के साथी हैं। उनके संगीत की ताजगी आज भी बरकरार है। अगला गीत आइए सुनते हैं उनकी फिल्म त्रिदेव से। इस गीत को आवाज दी है अमित कुमार, सपना मुखर्जी और साथियों ने। शब्द रचना है आनंद बख्शी की।

शुद्ध प्रेम की कोमल भावनाओं को आधुनिक संगीत के साथ पिरोना आसान नहीं होता, लेकिन विजू शाह ने गुप्त फिल्म के संगीत में मधुरता और आधुनिकता का ऐसा संगम रचा कि इस फिल्म के गीत श्रोताओं के दिलों में बसे हुए हैं। आइए इसे फिल्म से सुनते हैं उदित नारायण और सुनीता राव का गाया हुआ ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने।

श्रोतो, विजू शाह के संगीत की खासियत लय की गति तो थी ही, लेकिन उन्होंने अपने संगीत में मेलोडी और इमोशन को कभी नहीं छोड़ा। तेरे मेरे सपने फिल्म के मधुर गीतों में प्रेम के अलग अलग भाव सुनाई पड़े। आइए अगला गीत इसी फिल्म से अब आपको सुनवाते हैं, हरिहरन और साधना सरगम की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी।

श्रोतो, विजू शाह सिर्फ मस्ती भरे गीतों के संगीतकार नहीं रहे, बल्कि उन्होंने रोमांस और रहस्य को भी खूबसूरती से संगीत में ढाला। उनका संगीत सिर्फ धुनों का संग्रह नहीं, बल्कि एक ऐसा सुनहरा दौर है जिसे सुनते ही यादों के दरवाजे खुल जाते हैं और कई भावनाएं आँखों के सामने उजागर हो जाती हैं। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं उनके संगीत से सजा ये मधुर गीत तुझे मेरी कसम फिल्म से। आवाजें हैं उदित नारायण और साधना सरगम की, गीत लिखा है महबूब ने।

तुझे मेरी कसम फिल्म के इसी गीत के साथ सदाबहार फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अपनी रेडियो सखी उर्मिला जोशी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारे प्रथम प्रसारण सभा के कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होते हैं। सायंकालीन प्रसारण सभा में शाम 5 बजे फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

एप्स और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारे प्रथम प्रसारण सभा के कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होते हैं। सायंकालीन प्रसारण सभा में शाम 5 बजे फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें सड़क, बिजली और उद्योग

0: सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल है। साथ ही प्रधानमंत्री ने ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आज हजीरा का दौरा किया और औद्योगिक तथा अवसंरचना कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमन भी जाएंगे। असम मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने आज घोषणा की है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 3 में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। भारत के यात्री वाहन बाजार में मई में लगभग 44 लाख वाहनों की बिक्री दर्ज की गई। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज आय पर पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह की आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट को भी दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सूरत में विकास परियोजनाओं से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: जनप्रतिनिधिगण और यहां उपस्थित सूरत के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, केम छो बजा अने आपलू हुरत मजा मा ने तुसु लई आयो जो भाई સરસ મજાનું ચિત્ર બનાવી છે તે જરા SPJના લોકો આ ભાઈ કઈ ભેટ આપવા માંગે છે।
0: अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शिकायत निवारण के लिए 70,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अंकों के सत्यापन के लिए 7,314 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। जापान में पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का सेमीफाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 4-1 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे ये सभी कार्यक्रम FM 101.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के बागेश्वर केंद्र से और मीडियम वेव 187.3 मीटर यानी 1602 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी के पिथौरागढ़ केंद्र से भी रिले किए जा रहे हैं। कुमाऊनी लोकगीतों के कार्यक्रम शैलस्वर में आइए सुनते हैं ज्योति उप्रेती से कुमाऊनी लोकगीत।

ज्योति उप्रेती के गाए इसी कुमाऊनी लोकगीत के साथ अब आज का शैलसौर कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:10 हुआ जाते हैं। अब आप सुनेंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ पॉडकास्ट श्रृंखला के अंतर्गत श्री आकाश गुप्ता से बातचीत, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं अमित कुमार सिंह।
2: बस्ती के आकाश गुप्ता आज मेरे साथ हैं। इन्होंने अपने सात साथियों के साथ जो कर दिखाया उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इनके नाम और इनके कार्यों की चर्चा करके आज इनको पूरे विश्व के पटल पे स्थापित किया, जिसकी प्रशंसा बस्ती ही नहीं पूरे देश में की जा रही है। आकाश गुप्ता जी जो बस्ती जनपद के लजघटा गांव के निवासी हैं और ये छात्र हैं, इनके साथ जितने भी लोग उस अभियान में लगे हुए हैं सभी किसी न किसी विद्यालय में 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं के छात्र हैं। आकाश गुप्ता जी आपका स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मनोरमा नदी सफाई अभियान को कब आपने शुरू किया और कहाँ से प्रेरणा मिली आपको?
3: हमने अपनी मनोरमा नदी की सफाई का अभियान 67 दिन पहले शुरू किया। जब हमने ये शुरू किया तो हमारी नदी इतनी गंदी थी कि उसमें कचरा और उसके बाद ढेर सारी पूजा की सामग्रियां उसमें पड़ी हुई। किसी के यहाँ पे कार्यक्रम होता था तो वे लोग आकर अपना जो भी बाद का सामान होता था उसमें लाके नदी में फेंक देते थे, जिस वजह से हमारी नदी का स्थिति ऐसा हो गया था कि उसमें कोई भी जानवर पानी पीता नहीं था क्योंकि उसकी हालात ही ऐसी थी और कोई भी आदमी उस वहां पर नहाता भी नहीं था। तो हमने सोचा कि आज से 10 साल पहले जब हमारी नदी इतनी साफ थी, जहां पर सब लोग नहाते थे, जानवर पानी पीते थे, आखिर आज के टाइम पे वो हाल क्यों नहीं? तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ये हमारी नदी है तो इसे साफ करने का कर्तव्य भी हमारा है। तो हम लोगों ने 6 से 7 लोगों की टीम बनाई और अपनी नदी सफाई का अभियान शुरू किया। पहले दिन हमें नहीं लगा था कि हम लोग इस नदी को इतना आगे साफ कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी नदी का अभियान का सफाई जारी रखा और आज हमारी नदी कुछ ऐसी दिखने लगी है जहां पर जानवर आकर इसमें पानी भी पीते हैं और यहां पर लोग आकर नहाते भी हैं और हमारी बहुत प्रशंसाएं भी करते हैं।
2: आकाश जी, यह अभियान शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि इतने गंदी नदी है, आप कैसे इसको साफ करोगे, या आपका मनोबल भी एक बार कमजोर हुआ होगा कि मैं जो है कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। भाई ऐसी प्रेरणा आपको आई कहाँ से और गांव के लोगों का क्या सहयोग और सपोर्ट रहा आपके साथ?
3: जब हम लोगों ने ये कार्य स्टार्ट किया था तो हमारे गांव के जो लोग थे उन्होंने कहा ये साफ तुम लोग नहीं कर पाएगे क्योंकि ये नदी बहुत गंदी है, इसको साफ करने के लिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही साफ करेंगे लेकिन हर एक दिन काम करेंगे। और हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना हम लोग नदी अपना साफ कर लेंगे और लोगों का भी सपोर्ट नहीं रहता था क्योंकि गांव का कोई भी हमें सपोर्ट करने नहीं आता था, कोई भी नहीं कहने आता था कि हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे और तुम्हारी मदद करके नदी की सफाई को आगे जारी रखेंगे।
2: आप जब उस समय नदी की स्थिति उसकी हालात देखे तो कैसा लगा?
3: पहले के टाइम पे नदी की स्थिति बहुत ही खराब थी, तो हम लोग आते थे बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे हम सभी लोग, तो हम सोचते थे कि अगर हमारी नदी इतनी गंदी, हम लोग अगर यहाँ बैठते हैं, यहाँ बदबू आ रही है, तो इसको साफ करके हम लोग यहाँ पर सुकून से बैठेंगे। तो हम लोगों ने इसकी सफाई का काम शुरू किया और इसको साफ किया।
2: करीब 2 महीने चले इस अभियान में, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या मिली?
3: सबसे बड़ी चुनौती ये रही हमारी नदी में कि हम लोगों ने इसको साफ पूरा किया, 30 से 40 दिन तक हमने इसको लगातार साफ किया, लेकिन फिर 10 दिनों के अंदर इसके अंदर काइया जमा होने लगी और वो काइया धीरे धीरे सड़ने लगी और जिससे बहुत ज्यादा समस्या हमें होने लगी। फिर उसको साफ किया हम लोगों ने और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आकर वो पूजा की सामग्रियां वापस में डाल रहे थे। उसके बाद इसके अंदर से बहुत सारी कांच की बोतल्स और वो भी टूटे फूटे हालात में मिले। बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स का हाथ कट गया, पैर कट गया और यही सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि लोग आते हैं, कचरा फेंक जाते हैं, उसके बाद सहयोग भी नहीं करते, उसको साफ भी नहीं करते।
2: इस अभियान में गाँव के लोग और भी लोगों का क्या सहयोग रहा?
3: गाँव के लोग आते थे, हमें कहते थे कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक कोई भी गाँव वाला हमारे साथ नदी में नहीं। अब आप सोच सकते हैं, कहने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। अगर आप हमारे साथ में चलकर नदी की सफाई करते हैं तब तो हम मानेंगे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम साथी लोग जब से शुरू किए हैं तब से अभी तक काम कर रहे हैं।
2: क्या इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का कोई सहयोग आपके साथ रहा?
3: हमने एक वीडियो बनाई थी योगी जी को लेकर कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया, जिस वजह से हमारी एक दिन में वीडियोस 1 करोड़ लोगों ने देख लिया और योगी जी ने उसको वीडियो देखा भी। और योगी जी से पहले मोदी जी ने मन की बात में हमारी जिक्र किया

0: कि मैं और मेरे साथ लोगों की टीम ने मिलकर अपनी मनोरमा नदी की सफाई का पहल किया है।
1: सफाई अभियान के बाद अब तक मनोरमा नदी को आप देखते हैं तो क्या लगता है?
0: सफाई के बाद मनोरमा नदी हमारी इतनी साफ लगती है कि ये तो एक जैसे लगता है कि चमत्कार टाइप का, लेकिन ये चमत्कार नहीं, ये हमारी 67 से 68 दिनों की मेहनत है जो कि हमने लगातार की है।
1: आपको अभी क्या लगता है इसमें और कुछ करने की जरूरत है?
0: जी, अभी हमारा काम तो जारी रहेगा जब तक कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी का पूरा गांव का हिस्सा जब तक साफ नहीं कर लेते तब तक तो हमारा काम जारी रहेगा, उसके आगे भी सोचेंगे। लेकिन हम चाहेंगे इसमें हमारी सरकार भी मदद करे, क्योंकि हम कुछ युवाओं के बस का ये पूरा नदी साफ करना नहीं है।
1: जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में आपका नाम लिए तो आपको कैसा महसूस हुआ?
0: हम लोग उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के छोटे से गांव लजघटा में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक पटल पे हम लोगों की बात की, हमारे नाम का जिक्र किया, हमारी टीम का जिक्र किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे सफाई का अभियान भी अब लोग देख रहे हैं।
1: इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा सराहना मिलने के बाद आप पर, आपकी टीम पर क्या प्रभाव पड़ा? ऐसा भी आपको लगता है कि ये जिम्मेदारियां और बढ़ गई?
0: हाँ, जिम्मेदारियां बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अब जो हम लोग सफाई का काम करते थे 2 से 3 घंटा, अब हम लोगों ने ट्राई किया कि उसको और बढ़ाने का, और हम लोग अब धीरे धीरे और नदी को और आगे बढ़ते हुए साफ कर रहे हैं। और लक्ष्य तो यही है कि जितना हो सके हम लोग नदी को साफ रखे, जिससे कि जानवरों को और आम आदमी को परेशानी ना हो।
1: आज देश में पर्यावरण संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर काम करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: हम यही कहना चाहेंगे जो भी नेचर ने हमें दिया है वैसे ही हमको उसको संतुलित रखना है, कि चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे नहर हो, चाहे झरना हो, आप लोग उसको ऐसे सुरक्षित रखिए कि उसमें गंदगी ना फैले, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे तकलीफ ना हो।
1: आकाश जी, आपने जिस तरह से साबित किया कि बदलाव के लिए बड़े पद या बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं बल्कि इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यह कहानी अपने गांव, शहर, पर्यावरण के लिए कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा देगी।
0: अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको बड़ी मशीन या फिर कोई बड़े यंत्र की जरूरत नहीं है, आप अपने हाथों से पहले ट्राई कीजिए उसको साफ करने का। जब आप अपने हाथों से साफ करेंगे थोड़ा बहुत हिस्सा साफ होगा, फिर आपका मन करेगा कुछ और ट्राई किया जाए, धीरे धीरे आप लोग और आगे तक सफाई करें। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ हाथ और पैर थे, हम लोगों ने उसी से स्टार्ट किया है। उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया उसमें नाव बनाने का, जिसमें हम लोग थोड़ा नाव बना भी गए थे लेकिन बीच में टूट गया। ऐसे ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया, तब जाके हमारी नदी इतनी साफ हो पाई। क्योंकि आप लोग जब किसी चीज को स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे उसकी आगे की रास्ताएं खुलते जाएंगे।
1: क्या ये आपको उपकरण से जिसकी चर्चा मन की बात में मोदी जी ने किया, ये युवा जो है पर्यावरण या जल संरक्षण को लेकर के जागरूक है, इनके पास फावड़ा और जाल और ये ग्लव्स लेकर के ये नदी के सफाई अभियान को कर रहे हैं, क्या इस सफाई अभियान में आपको किसी ने कोई किसी तरह का सहयोग किया उसमें?
0: हम लोग जब वीडियो डालते गए उसके बाद लोगों ने इतना सपोर्ट किया, हमने उसमें अपना QR डाला जिसमें लोगों ने काफी सपोर्ट दिया, जिससे हम लोगों ने बूट्स मंगाए, ग्लव्स मंगाए और बहुत सारी चीजों को मंगाए, और बहुत सारे लोग हमारे एड्रेस पे कुछ सामान भी भेज देते हैं जिससे हमारी मदद हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा काम चलता रहा।
1: आपने कहा कि जब से हमने इस अभियान को शुरू किया तब से हम लोगों ने YouTube, Instagram और Facebook के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़ा, और इस अभियान को और सफल बनाने के लिए, नदी के सफाई के लिए हमने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े। कितने लोग इससे प्रेरित हुए?
0: जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे तो 0 फॉलोअर थे, लेकिन अभी के टाइम पे अगर बात की जाए तो हमारे इंस्टाग्राम पे 63,000 फॉलोअर हो चुके हैं, फेसबुक पे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और यूट्यूब पे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहा, लोगों ने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया जिससे हम लोग आज इतना ज्यादा सफल हो पाए।
1: आप जिस तरह से कार्य करके साबित किए बदलाव के लिए बड़े इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। आकाश जी, इसके बाद आपका क्या मिशन होगा?
0: अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम लोग नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बरसात का मौसम आने वाला है तो नदी का पानी काफी ज्यादा रहेगा, जिसके अंदर हल्के उसको सफाई नहीं की जा सकेगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे नदी के किनारे का जितना भी फील्ड है उसको हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, जितना हो सके पीपल, बरगद, पाकड़, जामुन, ये सब पेड़ बैठाएंगे।
1: इंस्टाग्राम और फेसबुक के तहत लोगों को जोड़ करके क्या लगता है आपको कि क्या इससे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, क्या इससे आगे और भी आपको काम करने के लिए और भी लोगों का साथ मिलेगा?
0: निश्चित सी बात है सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और जब तक ये नदी सफाई नहीं होगी पूरी तब तक ये काम चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वृक्षारोपण भी होगा, हमारी नदी का अभी घाट भी बनना है, हमारी नदी पर अभी जहाँ बरगद का पेड़ है वहाँ चबूतरा भी बनना है, और जब तक ये बन नहीं जाएगा तब तक ये कार्य चलता रहेगा। जब हमने इसको पहले दिन से स्टार्ट किया था तब से लेकर अभी तक हमें काफी ज्यादा लोग जाने लगे हैं, जैसे कि अभी विधायक जी ने कल परसों में आकर हमारे साथ मिलकर नदी की सफाई किया, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अब ये अभियान जो है हमारा बहुत आगे तक जाने वाला है और साफ सफाई का काम तो चलता रहेगा।
1: समाज में कुछ नया करने का आपने एक प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम

0: के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे अमित कुमार सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युवा वाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र मीनाक्षी। दोस्तों, आज 5 जून है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस। एक ऐसा दिन जो कैलेंडर की तारीखों से कहीं बढ़कर हमारी जिम्मेदारी का दिन है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि ये खूबसूरत नीली धरती, ये नदियाँ, ये पहाड़ और ये हवा, ये सब प्रकृति का दिया हुआ वो अनमोल तोहफा है जिसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन आज हमें खुद से एक ईमानदार सवाल पूछना होगा कि क्या हम इस तोहफे की कद्र कर रहे हैं? बढ़ती गर्मी, असमय बारिश और हमारे चारों ओर प्रदूषण का ये बढ़ता दायरा, ये सब प्रकृति की चेतावनी है कि हमें सिर्फ बातें नहीं करनी होंगी बल्कि कुछ करने का ये वक्त आ गया है। साल 2026 में इस पर्यावरण दिवस पर पूरी दुनिया का ध्यान इस बात पर है कि हम अपने पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे सुधारें। अक्सर हम सोचते हैं कि अकेले मेरे कुछ करने से क्या बदल जाएगा, पर साथियों, बूंद बूंद से ही तो सागर बनता है। शुरुआत हमें अपने आप से और अपने घर से करनी होगी। दोस्तों, कुछ ज़रूरी बातें हैं, जैसे बाजार जाते समय घर से कपड़े या जूट का थैला ले जाने की आदत डालें। घर में या आसपास कहीं भी पानी की बर्बादी अगर आप देख रहे हैं तो याद रखिए कि पानी की हर बूंद हमारे लिए ज़रूरी है, तो उसे रोकें। और आज के दिन अपने घर के आंगन में गमले या आसपास एक पौधा ज़रूर लगाएं। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने हमेशा प्रकृति को पूजा है, उसे माँ माना है, इसलिए इसका ख्याल रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर धरती हरी भरी रहेगी तो हमारा कल सुरक्षित रहेगा। आओ मिलकर कसम ये खाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम युववाणी में सुनाते हैं आपको वार्ता। वार्ता का विषय है जलवायु परिवर्तन गंभीर चुनौती। वार्ताकार है रुखसार खातून।
1: नमस्कार, आज मुझे जिस विषय पर अपने विचार रखने का अवसर मिला है वह किसी एक देश, समाज या जाति की समस्या नहीं है, बल्कि पूरी मानवता और इस जीवन पृथ्वी के अस्तित्व का प्रश्न है। वह विषय है जलवायु परिवर्तन, एक गंभीर चुनौती। साथियों, आज जब हम जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग जैसे शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि यह कोई वैज्ञानिक विषय है जो केवल प्रयोगशालाओं या बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तक सीमित है। लेकिन हकीकत यह है कि संकट हमारे घरों के दरवाजों तक आ पहुंचा है। आज मौसम का चक्र पूरी तरह बिगड़ चुका है। सर्दियां छोटी और बेअसर होती जा रही है, गर्मियां अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है और बारिश का कोई निश्चित समय नहीं रह गया है। कभी अत्यधिक सूखा तो कभी प्रलय का रिवार, यह सब कुछ और नहीं बल्कि हमारी धरती का वह बुखार है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। आइए

गहराई और इसके कारणों पर, आखिर हम इस मोड़ पर कैसे आ पहुंचे? प्रकृति ने हमें एक बेहद संतुलित और खूबसूरत व्यवस्था दी थी, लेकिन इंसान ने अपनी अंतहीन इच्छाओं और तथाकथित विकास की अंधी दौड़ में इस संतुलन को बिगाड़ दिया है। इसके मुख्य कारण हम सब जानते हैं, लेकिन उन पर ध्यान देना नहीं चाहते, जैसे कि जीवाश्म ईंधन अर्थात फॉसिल फ्यूल्स का अंधाधुंध उपयोग, हमारी गाड़ियाँ, हमारी फैक्ट्रियाँ और बिजली घर दिन रात कोयले और पेट्रोलियम को फूंक रहे हैं। इससे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसी चादर बना रही है जो सूरज की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। परिणाम, धरती लगातार उबल रही है। वनों की बेरहमी से कटाई अर्थात डिफॉरेस्टेशन, पेड़ धरती के फेफड़े हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन हमने कंक्रीट के जंगल बनाने के लिए असली जंगलों को साफ कर दिया है। जब फेफड़े ही नहीं रहेंगे तो धरती सांस कैसे लेगी? उपभोक्तावादी संस्कृति अर्थात हमारी यूज एंड थ्रो की आदत ने कचरे के पहाड़ खड़े कर दिए हैं जो पर्यावरण को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। आइए जानते हैं इसके भयानक परिणाम क्या है। अगर हमने इस चुनौती को गंभीरता से नहीं लिया तो इसके परिणाम क्या होंगे? बल्कि सच तो यह है कि इसके परिणाम दिखने शुरू हो चुके हैं, जैसे कि पिघलते ग्लेशियर और बढ़ता समुद्र का जलस्तर, हमारे पहाड़ों की शान, सदियों पुरानी बर्फ और ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यही रफ्तार रही तो इस सदी के अंत तक दुनिया के कई बड़े तटीय शहर जैसे मुंबई, न्यूयॉर्क और मालदीव जैसे देश पानी में समा जाएंगे। खाद्य और जल संकट, जब मौसम अनिश्चित होगा तो खेती तबाह हो जाएगी। किसान समझ नहीं पा रहे हैं कि कब बुआई करें और कब कटाई करें। आने वाले समय में यह संकट सिर्फ पर्यावरण का नहीं बल्कि भूखमरी का भी संकट बनने वाला है। बायोडायवर्सिटी का नुकसान, लाखों जीव जंतु और वनस्पतियों इस बदलते तापमान को सहन नहीं कर पा रहे हैं और हमेशा के लिए विलुप्त हो रहे हैं। हम प्रकृति के खाद्य श्रृंखला अर्थात फूड चेन को तोड़ रहे हैं। चलिए बात करते हैं एक मुख्य कारण, वैश्विक प्रयास और हमारी भूमिका पर। प्रकृति के पास हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए सब कुछ है, लेकिन लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं। दुनिया भर की सरकार पेरिस समझौते और COP सम्मेलनों में बड़े बड़े वादे करती है, नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य रखे जा रहे हैं, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जैसे नवीकरणीय स्रोतों अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या सिर्फ सरकार के भरोसे बैठकर हम अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। जब तक यह लड़ाई जन आंदोलन नहीं बनेगी, हम जलवायु परिवर्तन को नहीं हरा सकते। हमें अपनी जीवन शैली में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे, जैसे कि सर्वप्रथम ऊर्जा की बचत, घर से निकलते समय लाइट और पंखे बंद करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या साइकिल का इस्तेमाल करना। दूसरा, प्लास्टिक का त्याग, सिंगल यूज प्लास्टिक को अपने जीवन से बाहर निकालना। तीसरा, जल संरक्षण, पानी की एक एक बूंद को कीमती समझना। चौथा, प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़, हमें ना सिर्फ पेड़ लगाने होंगे बल्कि उनके बड़े होने तक उनकी देखभाल भी करनी होगी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे पास रहने के लिए केवल यही एक पृथ्वी है, हमारे पास कोई प्लैनेट बी या दूसरा ग्रह नहीं है। हम इस धरती को तबाह करने के बाद जहां जा सके

और सुरक्षित रूप में लौटाना होगा जैसा हमने इसे पाया था। जलवायु परिवर्तन कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका सामना हमारे आने वाली पीढ़ी करेगी। इसका सामना आज हमें इसी वक्त करना होगा। यह हमारे पास आखिरी मौका है इतिहास को बदलने का और अपनी गलतियों को सुधारने का। यदि आज हम नहीं जागे तो शायद जागने के लिए सुबह ही ना हो। हमें इतिहास इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करेगी कि हमारे पास संसाधन होते हुए भी हमने अपनी धरती को जलते हुए छोड़ दिया। आइए आज इस अवसर पर हम एक संकल्प लें कि हम प्रकृति के रक्षक बनेंगे, भक्षक नहीं। हमें अपनी पृथ्वी को फिर से हरी भरी और सुरक्षित बनाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।

0: छोड़ दिया। आइए आज इस अवसर पर हम एक संकल्प लें कि हम प्रकृति के रक्षक बनेंगे, भक्षक नहीं। हमें अपनी पृथ्वी को फिर से हरी भरी और सुरक्षित बनाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
1: दोस्तों, कार्यक्रम युववाणी में अभी आप सुन रही थी वार्ता। वार्ता का विषय था जलवायु परिवर्तन गंभीर चुनौती। वार्ताकार थी रुखसार खातून। चलिए कार्यक्रम में अब सुनते हैं यह खूबसूरत सा गीत।

0: देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
0: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, कार्यक्रम में बढ़ते हैं हमारे आज के अंक सिने जगत में, जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे अभिनेता सुनील दत्त के बारे में। सुनील दत्त भारतीय सिनेमा के एक दिग्गज अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता थे। उनका जन्म 6 जून 1929 को झेलम जिला, ब्रिटिश भारत के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। दत्त जी बॉलीवुड के उन चुनिंदा कलाकारों में से थे जिन्होंने पर्दे पर संवेदनशील प्रेमी तक की भूमिकाएं बेहद जीवंतता से निभाई। उनका असली नाम बलराज दत्त था। मुंबई के जय हिंद कॉलेज से पढ़ाई के दौरान उन्होंने सबसे पहले रेडियो सिलोन में एक रेडियो जॉकी के रूप में काम करना शुरू किया, जहां वे फिल्मी सितारों का इंटरव्यू लेते थे। सुनील दत्त ने अपने 4 दशकों में ज़्यादा लंबे करियर में लगभग 100 फिल्मों में काम किया। निर्देशक रमेश सहगल ने उन्हें फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में बतौर मुख्य अभिनेता पहला ब्रेक दिया, जहां से उन्होंने अपना नाम बदलकर सुनील दत्त रख लिया। भारत सरकार द्वारा 1968 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। आज सुनील दत्त जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे दिलों में आज भी जिंदा है। तो चलिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही

0: चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं आज के दिन घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। 5 जून 1984 को भारतीय सेना ने पंजाब के अमृतसर में स्थित सिखों के सबसे पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर परिसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार का मुख्य चरण पूरा किया था। ये सैन्य अभियान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर मंदिर परिसर में छिपे जनरल सिंह भिंडरांवाले और अन्य सशस्त्र उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया था। 5 जून की रात को भारी गोलाबारी हुई और 6 जून की सुबह तक यह अभियान लगभग समाप्त हो गया। आज ही के दिन 1975 में ब्रिटेन में एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। इस जनमत संग्रह में ब्रिटेन की जनता ने भारी बहुमत से यूरोपीय इकोनॉमिक्स कम्युनिटी में बने रहने का फैसला किया था, जिसे बाद में हम यूरोपीय संघ के नाम से जानने लगे। 1669 में मुगल शासक औरंगजेब का दिल्ली में आधिकारिक रूप से राज्याभिषेक हुआ, जिसके बाद उन्होंने खुद को आलमगीर की उपाधि दी। 1953 में डेनमार्क ने अपना नया संविधान अपनाया, जिसके तहत वहां संवैधानिक राजशाही की स्थापना की गई।
1: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
0: चल दोस्तों, जान लेते हैं बीते दिन पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर। हमारा कल का प्रश्न था, आक्रामकता की शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, जिसका सही उत्तर है आक्रामकता की शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को मनाया जाता है। अब नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। अगर जानते हैं आप इस प्रश्न का सही उत्तर और भेजना चाहते हैं हमें, तो नोट कीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9431100112। अब दीजिए इजाजत अपनी रेडियो मित्र मीनाक्षी को। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उत्तरायण।

उत्तरायण कार्यक्रम सुनी सभी श्रोताओं के लता कपूरक नमस्कार। स्वागत छू श्रोताओं आप सब न हमारे कार्यक्रम में। श्रोताओं जैसे कि आप सब जान छा हर साल 5 जून हूँ विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जा। इके मनानक मुख्य उद्देश्य ये छू कि हम अपन जो पर्यावरण छू उके संरक्षित करूँ, वीक प्रति जागरूक हूँ और जो आम मनखी छन उनके लिए ये एक प्रति जागरूक करण छू और प्रेरित करण छू कि हम अपन जो पर्यावरण छू उके साफ स्वच्छ और भल बनाई धरूँ। श्रोताओं विश्व पर्यावरण दिवस पर ये एक महत्व और आवश्यकता हेतु अपन स्तर पर स्वच्छ और साफ पर्यावरण के निर्माण के लिए लोगों के में जागरूकता हम बहुत ज़्यादा जरूरी छू। हमार पर्यावरण जो छू हमार प्रकृति एक हिस्सा हूँ जो अगर हम उके गंद धरनू तो वीक परिणाम हम उके भुगतन पड़नी और अगर उके हम साफ स्वच्छ धरनू तो ये हमार लीजिए बहुत फल है सकूँ और ये सब हमार कर्तव्य ले छू। प्रकृति जो छू वो हमार सदियों बे पालन पोषण करते आने लग रहे पर मन की अपन सुविधा के लीजिए प्राकृतिक शोषण करते रहो तो अगर ये सके यो क्रम चलते रहो तो एक दिन यस लयाल कि जब हम सब विनाशक ओर पुजोल। तो श्रोताओं प्राकृतिक दगड़ मिल बेरण न केवल पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी छू बल्कि हम सब न क्लीजी ले लाभकारी होल। मन की अपन आवश्यकता के पूर्ण करने के लिए जो छू प्रकृति के उतुके वी के उतुके दोहन करो जेतु जरूरी छू और जो दोहन कर रहो जो शोषण कर रहो वीक भरपाई ले करण बहुत ज़्यादा जरूरी छू। तबे हम प्राकृतिक जो संसाधन छन हमार पर्यावरण छो वीक लंब वक्त तक लाभ ली सकनू और प्रकृति दगड़ मिल बेर रण जो छू हमार लीजिले फायदेमंद छू और हमार प्रकृति के लीजिले फायदेमंद छू क्योंकि हम सब प्रकृति के हिस्सा छा और हम सबों के आजक दिन ये संकल्प लेन छे कि हम सब मिल बेर अपन जो प्रकृति छू वीक जो छू साफ होके स्वच्छ धरूँ और वी के दगर दगर जतुले है सको जतुले हम मनखी अपन अपन तरफ अगर कोशिश करूँ तो वीक जो छू संरक्षण हम के करते रहन चाहें। जब कोई नुकसान करूँ तो वीक भरपाई ले हम के करण बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो श्रोता कार्यक्रम में हम आप दगर यो पर्यावरण दिवस पर बातचीत करी और अब कार्यक्रम में आपके सुना लूँ यो गीत।

0: श्रोताओ, कार्यक्रम में लापूल अनीता कंडारी गाई हुई ये गढ़वल गीत सुनो।
1: घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
2: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है,
1: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
2: बल्ब्स, प्लग, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI,
1: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
2: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
1: खरीदें बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।

0: श्रोताओं, आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून हूँ पर्यावरण हम मनानू तो हमारे पर्यावरण जो छू हमारे लिए जी कतु ज़्यादा महत्वपूर्ण छू। कसी के हम के साफ स्वच्छ बनाना चाहें और अपन कसी योगदान देना चाहें और हमारे जो नानन नानतिन छन उनके पर्यावरण के प्रति हम के कसी जागरूक करना चाहें और स्कूलों में जो छू वो कसी उनके पर्यावरण के बारे में यो जानकारी दीजिए। तो ये विषय पर आज हम आप ले रहे हैं यो क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता जैक विषय छू बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता। और ये जानकारी आपको देने लग रही शिक्षिका ज्योति भट्ट। तो आप लोग सुनो ये क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता। आपका नाम?
1: मेरा नाम है ज्योति भट्ट
0: ज्योति, क्या करते हो आप?
1: जी। मैम, मैं टीचिंग जॉब में हूँ।
0: अच्छा, आप पढ़ाती हैं, कहाँ पढ़ाती हैं?
1: ये GGHS रैला कोर्ट में पढ़ाती हूँ मैम, अल्मोड़ा में।
0: अच्छा, ये बताइए ना, जैसे 5 जून को पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है
1: जी।
0: और पर्यावरण संरक्षण जो है वो हम मनाते हैं, तो वो क्यों महत्वपूर्ण है, जरूरी?
1: इसके बारे में कहना चाहूंगी कि देखिए, 5 जून 1972 को यूनाइटेड नेशन ने इस दिन की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना था। और इस साल की जो थीम है हमारी, इसकी आवर लैंड आवर फ्यूचर, यानी हमारी भूमि हमारा भविष्य है। आज के समय में हम देख ही रहे हैं कि हमारी धरती में कितना प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, प्लास्टिक का भी इंतहा यूज हो रहा है, पेड़ों की इतनी कटाई हो रही है, हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, बारिश कम हो रही है। और अगर हम अभी भी नहीं सुधरे, मतलब अगर हमने अभी भी, प्रकृति हमें चेता रही है कई तरीके से। आप देख रहे हैं असमय बारिश हो रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, प्रकृति कहीं ना कहीं चेता रही है हमें, लेकिन अगर हम नहीं सुधरे तो आने वाली पीढ़ियों का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और बड़ा ही कठिन समय आने वाला है।
0: ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं ना अक्सर आपदा वगैरह आ जाती है, तो इसके लिए जो है इस पर्यावरण को संरक्षित करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, ये
1: बहुत
0: बताइए
1: ज्यादा
0: कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे पर्यावरण को हमारे नुकसान पहुंच सकता है और कौन कौन सी
1: और
0: चीजें हमें नहीं करनी चाहिए जिससे कि पर्यावरण मतलब खराब ना हो।
1: देखिए, सबसे पहले तो ये हो रहा है आजकल, एक चीज आप भी नोट कर रहे होंगे कि समय ऐसा आ गया कि हर एक व्यक्ति के पास अपनी पर्सनल गाड़ी है। एक घर में भी पहले से ऐसा होता था, ये चीजें रेयर होती थी, गाड़ी वगैरह ज्यादा नहीं होती थी किसी के पास। लेकिन आप एक ही घर में देखिए, 4 लोग हैं तो 4 स्कूटी रखी हुई है, कार अलग रखी हुई है, और हर कोई अपना अपना व्हीकल लेके निकल रहा है। और इस वजह से क्या हो रहा है कि मुझे लगता है गाड़ियों की अधिकता होने के कारण से भी पर्यावरण प्रदूषण दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। आप देख ही रहेंगे, पर्यटन पर्यटन करके आजकल गर्मियों में कितनी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और इन गाड़ियों से निकलने वाला धुआं कितना नुकसान कर रहा होगा प्रकृति। मतलब ये हो सकता है कि अगर हम एक गाड़ी का यूज मिलके एक साथ कई लोग करें, या घर में अगर गाड़ियां ज्यादा हैं तो हम कोशिश करें कि ऐसा टाइमिंग हो, या हम एक साथ निकले, या कुछ इस तरह की प्रोग्रामिंग हम अपने करें आपस में कि गाड़ी का कम से कम इस्तेमाल हो,
0: बिल्कुल, जैसे
1: दूसरा
0: पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उनका यूज करना
1: जी हाँ
0: चाहिए।
1: उनका यूज करें। और दूसरा ये है कि प्लास्टिक का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, हर चीज में प्लास्टिक है। पहले से शायद आपको देखा होगा कि आपने, जब हम बचपन में छोटे थे तो हर बिस्किट का पैकेट, टॉफी वॉफी सब कागज के रैपर्स में पैक आती थी, और ये चिप्स और ये गुटखा चिप्स वगैरह के तो हमने कभी देखे नहीं थे पैकेट वगैरह। अब ऐसा टाइम हो गया है कि हर चीज में प्लास्टिक है, और तो और इवन दवाओं की जो शीशियां हैं वो भी सब प्लास्टिक में ही आने लगी। बढ़ता हुआ प्लास्टिक, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो शायद ही खत्म होने वाली है, ये प्लास्टिक तो ऐसा है जो नष्ट भी नहीं है।

0: और इससे क्या हो रहा है कि हमारी प्रकृति को इतना बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि प्रकृति इसकी खाद भी जो नेचुरल अपने प्रोसेस से खाद वाद बना लेती है, तो वो भी नहीं हो सकता इससे।
1: निकलती है। हाँ
0: हाँ, और ये कहीं जैसे नालियों में चोक हो जाना, जानवर खा ले रहे हैं, वो मर जा रहे हैं उसको खा के, उनके पेट में पॉलीथीन फंस जा रहा है। और दूसरा है कि पॉलीथीन लोग जला देते हैं, सोचते हैं अरे आग बहुत अच्छी जल रही है, लेकिन शायद ये पता नहीं कि उसके धुआं धुआं जो कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है वो, और वो भी बहुत ही जहरीली गैसों में आता है।
1: अच्छा ये बताइए, जैसे ये प्रदूषण की बात करते हैं ना, और भी कई वो है जिससे हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे अनाधुन पेड़ों का कटान है ना।
0: जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, पेड़ों का कटान आजकल लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और इतना अधिक कंस्ट्रक्शन है हमारे अल्मोड़ा शहर में, आप देख लीजिए, मतलब जहाँ आप सोच भी नहीं सकते हैं, आड़े टेढ़े मेढ़े लोगों ने घर लगा दिए हैं, और पेड़ों पेड़ गायब होते जा रहे हैं दिन भर दिन।
1: बिल्कुल।
0: और इस दूसरा ये है कि जंगलों में आग लग रही है आजकल, जंगलों में आग लगने से कितने पेड़ जल के खाक हो गए हैं, और जीव जो हमारे जीव
1: जीव
0: जंतु हैं,
1: जंतु हाँ
0: जिनका नेचर जो बेचारे नेचुरली इनका घोंसला घर है, मतलब सब जल के नष्ट हो गया। और कई और लोग आग लग गई, गांव वालों ने लगा दी, लेकिन पता किसी को नहीं है कि वो आग लगी कैसे है, किसने लगाई। और ये चीजें ऐसे कि हमें इन चीजों के लिए अवेयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में अगर हम प्रकृति को नहीं बचाया, हमने पेड़ों को नहीं लगाया, काट भी रहे हैं, तो लगाना कोई ये थोड़ा है कि आग लगाएंगे कल ही वो पेड़ बड़ा हो जाएगा। तो ये है कि हमें बहुत सोच समझ के पेड़ों का कटान करें, पहले तो कटान ना ही करें, काट भी रहे हैं तो पेड़ लगाएं, उनको संरक्षित करें, तभी पर्यावरण बच पाएगा।
1: वो तो सही कहा आपने, क्योंकि देखिए आजकल सब ये विकास की दौड़ में कहते हैं ना कि विकास के संग संग विनाश भी होता है, तो वही स्थिति आती है कि अगर हम विकास कर रहे हैं तो उसको संतुलित ढंग से हमें करना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए, कोई ऐसा नया तरीका
0: अभी देखिए
1: कुछ
0: हम, हाँ
1: निकालना चाहिए कि जिससे अगर विकास हो रहा है तो उसकी जो चीजें खराब हुई है उनको ठीक भी करी जाए ना।
0: जी बिल्कुल, पेड़ों के कटने से जमीन का क्षरण हो रहा है, सूखा बढ़ रहा है। आपने अभी हाल ही में ये आपने देखा होगा, ये आपदा आई थी धराली में, तो वहाँ पर भी देखे कि लोग नदी के मुहाने में जाके बस गए, वहीं अपना पूरा शहर बसा के लोग रह रहे। अचानक नदी आई और वो तो अपने ही पुराने रास्ते पे आई, वो उसका रास्ता वो
1: रोक
0: बहा
1: रखा
0: ले गई,
1: था। हाँ
0: बिल्कुल बहा ले गई। तो प्रकृति के संग छेड़छाड़ इंसान को कहीं ना कहीं भारी नुकसान ही पहुंचाएगी।
1: ये तो बिल्कुल सही कहा। और ये बताइए ना, जैसे कि अगर पर्यावरण संरक्षण में हर व्यक्ति जैसे कैसे अपना योगदान दे सकता है कि जैसे हाँ पर्यावरण को नुकसान कम से कम हो।
0: देखिए सबसे पहले तो हमें अपने आप से ही शुरुआत करनी होगी, अपने आप से शुरुआत करेंगे तभी, जैसे कूड़ा वगैरह है, लोग क्या करते हैं, हम छोटा सा एक स्तर देख लीजिए, हम कहीं जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो लोग क्या आजकल क्या कर रहे हैं कि सबसे बुरा एक चला है डिस्पोजल, गिलास है, प्लेट है, वहीं खा रहे हैं, पका रहे हैं, वहीं पर ही कूड़ा फेंका रहे हैं। भी शाम को ही हम कहीं पार्क में गए थे घूमने के लिए, तो मैं वहां इतना कूड़ा पड़ा हुआ था ना बच्चों के पार्क में, मतलब हर जगह चिप्स के पैकेट पड़े हुए थे, तो बहुत ही बुरा लग रहा था देख के। मैंने कहा नेचर इतनी सुंदर है, एक पार्क जैसे हमारे अल्मोड़ा शहर में आप रेयरली देखेंगे कि पार्क हो गए हैं, एक आध पार्क हैं भी, तो वहां गए तो देखा इतना कूड़ा हो रहा था वहां, इतने चिप्स के रैपर पड़े थे, पर चिंता किसी को नहीं थी, पड़ा है तो पड़ा है। ये
1: हाँ
0: छोटी छोटी चीजों से ही हमें प्रकृति को अगर स्वच्छ रखना है, हम अपने स्तर से कूड़े को ना फेंके, कोई भी चीजें खा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, तो हम उस कूड़े को अपने साथ ही लेके आए, उसका सही ढंग से उसको जहाँ डाला जाना है वहां डालें। बाजारों में चलती फिरती गलियों में इतनी गंदगी है, लोग सोचते भी नहीं है कि आने जाने वालों को कुछ प्रॉब्लम होगी,
1: बिल्कुल।
0: कूड़ा ऐसे ही रस्तों में फेंक देते हैं। और इसके अतिरिक्त जैसे जंगलों में भी लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं, आजकल पिरुल तो सबसे बेकार चीज है, आपने देखा होगा एकदम से आग पकड़ने वाली,
1: पकड़ता है हाँ
0: और पिकनिक मना रहे हैं, वहाँ आग लगा रहे हैं, खाना पका रहे हैं, और हो सकता है कि कई रीजन ये भी हो कि लोगों के इस तरह से छोटे छोटे अपने पिकनिक मनाने के चक्कर में पता चला जंगलों में आग लगी।
1: कई कारण हो सकते हैं ना,
0: और
1: तो
0: बिल्कुल
1: इसके लिए लोगों को भी सोचना चाहिए ना, जब तक हम अपने अंदर से नहीं सोचेंगे कि जो पर्यावरण है आने वाले समय में अगर स्थिति खराब हो गई तो ये हमारे लिए भी घातक हो सकती है। ये अब मन में अगर इंसान सोचे तो फिर उसी के अकॉर्डिंग काम करे तो ऐसा नहीं होगा ना।
0: जी बिल्कुल, प्रकृति है तो हम हैं, अगर प्रकृति को हम सुरक्षित नहीं करेंगे तो हम सब लोगों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा।
1: अच्छा ये बताइए, जैसे आप शिक्षिका हैं तो बच्चों को आप लोग पर्यावरण के बारे में अपने स्कूल में जानकारी देते हैं कि पर्यावरण क्या है, हमें कैसे उसको सुरक्षित रखना चाहिए, कैसे अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चे आने वाले देश का भविष्य है और जो भी हम उनको सिखाते हैं वो सीखते हैं करते हैं, तो इसीलिए उनको बचपन से अपने पर्यावरण की जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या कहेंगे इस विषय में?
0: मैम बिल्कुल, स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चे का जीवन का आधार बनता है और कई सारी चीज़ें सीखता है बच्चा वहाँ और उसके जीवन में अप्लाई करता है। तो जैसे हमारे विद्यालय में अभी जुलाई का महीना आ रहा है तो हरेला आदि आता है 15 तारीख को, तो उस उपलक्ष्य में बच्चों से हम वृक्षारोपण करवाते हैं स्कूल में और बच्चों से तरह तरह के कॉम्पिटिशन करवाते हैं, निबंध और वाद विवाद जैसी प्रतियोगिता ये स्कूल में संचालित करवाई जाती है। इको क्लब बना हुआ है स्कूल में जिसके अंतर्गत बच्चों के लिए ऐसी सामग्री जो ये गमले हो गया, कुदाल हो गई, फावड़े, मतलब जो पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि स्कूल में इन चीज़ों को इकट्ठा करके हम बच्चों से पौधारोपण वगैरह करवा सकते हैं। और स्कूल में बच्चे को थोड़ा हम जैसे आजकल उस विद्यालय में कई तरह के प्रोग्राम संचालित किए जा रहे हैं, कौशलम, आनंदम, तो आनंदम में हम बच्चों को सुबह सुबह यही जानकारी देते हैं पर्यावरण संरक्षण के बारे में, प्रकृति में जो चिड़ियाँ चहक रही हैं कि उनको इस बोलते हैं आंखें बंद करके बच्चों महसूस करो कि तुम्हें क्या क्या सुनाई दे रहा है, कौन कौन सी बर्ड्स की आवाज़ें सुनाई दे रही है, या फिर आपको अपने चारों तरफ कौन कौन से वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, आप जिस इलाके में रहते हैं आप अधिकतर कौन प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। और दूसरा यह है कि अब क्योंकि ये कार्यक्रम अब बढ़ते ही जा रहे हैं स्कूल में इस तरह के, तो हम नो प्लास्टिक डे सोच रहे हैं कि ऐसा कार्यक्रम कोई शुरू कराएं कि हफ्ते में एक दिन बच्चा प्लास्टिक का कोई भी सामान इस्तेमाल ना करे, ना वो पॉलीथिन लाए, ना टिफिन लाए, ना कुछ ऐसा नहीं लाए प्लास्टिक का। और कुछ अभी जुलाई के टाइम में ये भी है कि बच्चों को एक पौधा देंगे और बच्चा उसकी देखभाल करेगा, 6 महीने बाद जिस बच्चे का सबसे सुंदर पौधा होगा तो हम उसको पुरस्कृत करेंगे। और विद्यालय में तरह तरह के कार्यक्रम होता रहता है, जैसे नुक्कड़ नाटक वगैरह है, तो अभी जैसे आजकल समर कैंप वगैरह चल रहा है तो उसमें भी हम इस तरह के नुक्कड़ नाटक करके बच्चों को जागरूक कर सकते हैं या कर रहे हैं। और कचरे से जुगाड़ भी एक आजकल चला हुआ है कि जैसे देखिए इतना हम लोग इतना कूड़ा पैदा कर रहे हैं ना मनुष्य, तो यह है कि कचरे से ही कोई जुगाड़ का अगर बच्चों को कुछ इस तरह से शिक्षा दी जाए ना कि जो हमारे पास सामान पड़ा होता है, बच्चों इतना सामान खरीदने की या हर चीज नया लेने की जरूरत नहीं है। आप शायद जब हम छोटे थे तो आपने भी क्या होगा, हम वेस्ट मटेरियल की चीजें बना के ले जाते थे स्कूल में, तो कचरे से जुगाड़ का भी हम बच्चों को बताते हैं कि बच्चों ये तुम्हारे, तुम तो प्रकृति के नजदीक रहते हो, जो गांव में रहते हो तो चारों तरफ की चीजों से कई सुंदर सुंदर चीजें बना सकते हो। तो इस तरह से बच्चों को हम काफी उत्साहित करते हैं और उनको आगे के लाइफ के लिए तैयार करने की कोशिश करते हैं कि वो समझें प्रकृति का महत्व।
1: बिल्कुल, इसके संग संग साफ सफाई की जो बातें हैं वो भी स्कूल में बच्चों को सिखाई जाए, जिससे कि वो मतलब आसपास का वातावरण स्वच्छ रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
0: ये जैसे मैं कह रही थी लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं टॉफियां, छिकल, कुछ भी खा पी के प्रकृति के बीच में साफ सुथरी जगहों में ना फेंके, और जैसे कहीं भी पॉलीथीन वगैरह है तो उसको आप उधर उधर ना छोड़ें, अपने साथ लेके जाएं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो वहाँ प्रकृति को गंदा ना करें, अपने साथ ही अपना कचरा लेके जाएं। आजकल तो आप देख रहे हैं कि पर्यटन का कितना लोगों में उत्साह बढ़ गया है, क्रेज बढ़ गया है कि लोग जा रहे हैं लेकिन वहाँ जाके मैगी पका रहे हैं, मैं मैगी के पाउच वहीं फेंक के आ जा रहे हैं। इन चीजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि बच्चा अभी से अवेयर होगा तो वो आगे जाके इस तरह का काम नहीं करेगा।
1: बिल्कुल, क्योंकि अगर आप बच्चों को सिखाएंगे तो अपने पर्यावरण के बारे में जानकारी देंगे, उसका महत्व बताएंगे, तो बच्चे आगे जाके इस विषय में सोचेंगे और फिर उसी के अनुसार काम भी करेंगे। अच्छा ये बताइए ना, जैसे कई लोग ऐसे हैं जैसे आपने बोला कि ये जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ भी खा के इधर उधर फेंक देते हैं, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि हमारा पर्यावरण जो है कितना महत्वपूर्ण है, उसकी सुरक्षा हमें क्यों करनी चाहिए?
0: देखिए जैसा सभी लोग अवगत हैं, जो श्रोतागण सुन रहे हैं सभी जानते हैं कि हमारी प्रकृति, हमारा अस्तित्व हमारी प्रकृति से ही है। अगर ये प्रकृति साफ होगी, स्वच्छ होगी तो ही हम सांस ले सकेंगे। इससे बहुत जरूरी भी है कि हम स्वच्छता के प्रति जागरूक हो जाएं, अपनी प्रकृति के प्रति जागरूक हो जाएं, पेड़ों को कोशिश करें कि ना काटें, अगर काट भी रहे हैं, अगर एक पेड़ काट रहे हैं तो हम उसकी जगह और दो पेड़ लगाएं, या कुछ कई जगह पे ऐसा भी सिस्टम होने लग गया कि शादी करते समय

0: पौधारोपण कराया जा रहा है। तो इस तरह से कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम चला के हम पौधे पौधों को अधिक से अधिक लगा के पौधों को सुरक्षित रख पेड़ों को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि पेड़ सुरक्षित होंगे तभी हमारा आने वाला जीवन सुरक्षित होगा। दूसरा यह है कि हम छोटे अपने स्तर से ही शुरू करें, अपने घर के अगल बगल आस पास साफ सफाई रखें, कूड़ा कचरा ना करें, कूड़े को एक निश्चित स्थान पर डालें या उसको जलाएं, देख रेख में ही चलाएं, ये नहीं कि जला हुआ छोड़ दिया, आग कहाँ फैल रही है कोई मतलब नहीं है। और नौले हैं, जैसे गांव गांवों में नौले होते हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं, उनकी उनको भी स्वच्छ रखा जाए, गंदगी ना की जाए उनमें। और बाजार आदि में गंदगी, लोग चलते चलते खाते पीते चीजों को फेंकते हुए चलते हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, केले खा रहे हैं, बीच रास्ते में फेंक दे रहे हैं। तो और स्पेशली मैं तो यहाँ अल्मोड़ा बाजार में देख रही हूँ, जगह जगह पान की पीकें दीवारों में, ओनों में, कोनों में, कहीं भी आप चले जाइए, हमारी गलियों में चले जाइए, मतलब इन चीजों पे थोड़ा प्रशासन स्तर से भी रोक लगनी चाहिए, तभी हमारा शहर सुंदर सुरक्षित और स्वच्छ रह पाएगा।
1: बिल्कुल
0: और
1: सही
0: इसी
1: कहा
0: इसलिए
1: आपने,
0: हाँ इसके लिए हम सभी को अवेयर होना पड़ेगा।
1: बिल्कुल, क्योंकि एक जने के अवेयर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, जब तक सब इस स्तर पर सोचेंगे नहीं और कुछ काम करेंगे नहीं तो कोई भी
0: ना
1: काम
0: देखिए,
1: संभव
0: हाँ
1: नहीं हो
0: विदेशों
1: सकता।
0: में कितना स्ट्रिक्टनेस है स्वच्छता के लिए, हमारे देश में
1: लेकिन
0: नदियों को
1: हमारे देश के
0: जी
1: ही लोग बाहर जाके कहते हैं ना, वहाँ इतना अच्छा है, साफ सफाई है,
0: जी
1: पर अपने यहाँ आके फिर से वही करने लगते हैं।
0: तो आप मैम ये चीजें कहना चाह रही हूँ मैं, देखिए यहाँ नदियां हैं, हम नदियों को माँ कहते हैं, पवित्र गंगा नदी कहते हैं, कचरा भी सबसे ज्यादा उसी नदी में डाल देते हैं।
1: सही
0: साड़ी,
1: कह,
0: अभी पिछले साल ही हम जब ये कुंभ स्नान गए थे तो इतना घाट में इतनी गंदगी थी, इतना लोगों ने फेंका हुआ था, साड़ियां चूड़ी कपड़े, और इतना गंदगी थी उस घाट में, हालांकि हमने धर्म के नाम पे हम भी डुबकी लगाए, लेकिन वही था कि वहां जो गंदगी हो रही थी ना उसको देख के तो मन बिल्कुल ही ऐसा हो गया था कि हम आए तो हैं स्नान करने, लेकिन शुद्धता कहाँ रही इस गंगा में।
1: बिल्कुल
0: और मतलब आप नदी है गंगा है और भैया चूड़ी कंगन पायल बिच्छू कपड़े
1: हाँ।
0: साड़ी लुकड़ा लत्ता सब डाल दे रहे नदी में, तो आप श्रद्धा दिखा रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं पर्यावरण को, नदी को आपने बिल्कुल अशुद्ध कर दिया। नदियों पे तो
1: हाँ।
0: कुछ डालने के लिए, चाहे हमारा धर्म भी है, डालने के लिए बिल्कुल ही इसमें बैन लग जाना चाहिए कि नदियों में कुछ ना डाला जाए,
1: बिल्कुल
0: तभी स्वच्छ रह पाएंगी नदियां, वरना बड़ा मुश्किल है आगे।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपने स्तर पर काम करना चाहिए पर्यावरण के लिए, क्योंकि जब हमारा पर्यावरण सही होगा तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं और हमारा मन जो है प्रसन्न हो सकता है। तो
0: जी
1: ज्योति, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें पर्यावरण से संबंधित बताई और बच्चों को कैसे आप शिक्षा देती हैं पर्यावरण की, इस बारे में भी हमको जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी
1: श्रोताल्ले अपुल, पर्यावरण संरक्षण हेतु बच्चों में जागरूकता विषय पर शिक्षिका ज्योति भट्टगढ़ करी गई क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता सुने, इन्हर दगड़ बातचीत करने लग रही लता कपूर।

0: श्रोताओं, अल्लापुल तनुजा नौटियाला गाई हुई योगी त्रुणम।
1: सुनील, घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
2: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है,
1: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
2: बल्ब्स, प्लग्स, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI,
1: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
2: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
1: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अल्लापुल अनिल कुमार भारती गाई हुई गढ़वाल गीत सुनो। और श्रोताओं, आजकल हम सबूल यो देखनल कि कब तक बहुत ज़्यादा गर्म भण लग रहो और कब तक बारिश है जाए। तो जब बारिश है जाए तो मौसम थोड़ा ठंड है जहाँ, इसमें हम स्वेटर जैकेट वगैरह पहन ली लूँ। तो अगर मौसम में यो बदलाव होते रहो तो वे प्रभाव हमारे ऊपर ले पड़ूँ और हम अनेक प्रकार जो मौसमी

रोग हनी है इसकी। जब मौसम बदलते रहो तो अनेक प्रकार के रोग, गंभीर जो रोग छन वो है जानी, और कब्ते कब्ते हम इनके बहुत नान समझनो परिवार ठूल है जानी। तो इसमें हमके अपन स्वास्थ्य तक ध्यान धरना चाहिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना चाहिए, और किले की ये रोग तब है नहीं जब हमारे पर्यावरण में असंतुलन है, जहाँ हर चीज़ का पर्यावरण सही नहीं है, तो तब हम जो छो रोगग्रस्त ले हनु और वेक प्रभाव हम ऊपर पड़ो। तो ये के लिए जी हम सब के अपन जो पर्यावरण छू के संरक्षित धरन चाहिए, साफ धरन चाहिए, ये हम सब कर्तव्य छू। तो उम्मीद करनु कि आप लोग ले हमारे जो पर्यावरण छू वेक प्रति ध्यान दिला, सतर्क रहला, और अपन अपन तरफ पे कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा कोशिश तब ले करला ताकि पर्यावरण जो छू वो बढ़िया है सको और अगिन के लिए बहुत फल है सको और आने वाली पीढ़ी के लिए वेक फायद मिल सको। तो ये के दगर हमारे आजक उत्तरायण कार्यक्रम इतने के संपन्न हूँ। अगेन आपू दगड़ फिर भेंट करूँ कार्यक्रम में, तब तक एक लीजिए आपू दगड़ी लता कपूर के आगे दीजिए नमस्कार।

अभी आप उत्तरायण कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
4: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जिले के भीमताल में 96,71,00,000 रुपए लागत की 13 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने नई टिहरी में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। हरिद्वार में आगामी कांवड़ यात्रा और कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर पुलिस ने उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश में पौधरोपण कार्यक्रमों का आयोजन, पर्यावरण संरक्षण का दिया गया संदेश। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नैनीताल जिले के भीमताल में 96,71,00,000 रुपए लागत की 13 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

0: इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये योजनाएं आने वाले समय में जिलावासियों के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने हिमालय, गंगा और यमुना जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को सामूहिक दायित्व बताया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण भावी पीढ़ियों के लिए सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
1: पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज हमने नैनीताल जनपद की 100 करोड़ की विकास योजनाओं का आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है और ये सभी योजनाएं आने वाले समय में हमारे इस जनपद वासियों के लिए बहुत उनकी सुविधा के लिए, उनके विकास के लिए, उनके जीवन को सरल बनाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी। प्रकृति और पर्यावरण ये हमारा वर्तमान भी है।

0: हम सभी का दायित्व है, हम सभी की जिम्मेदारी है।
1: मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आज नई टिहरी में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि विकास कार्यों में अगर किसी प्रकार की प्रशासनिक या शासन स्तर पर बाधा है तो उसका शीघ्र समाधान किया जाएगा। उन्होंने आगामी मानसून को देखते हुए सभी विभागों को पहले से ही सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
2: विभिन्न स्कीम्स प्रोग्राम्स की जनपद अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई और जो कार्य गतिमान है उसको और स्पीडली करने के निर्देश दिए गए सभी संबंधित विभागों ने। और अगर कोई वैसे इश्यूज थे जिसको शासन स्तर पर निस्तारण होना है तो वो भी डीएम को कहा गया है कि उसको आपको लेकिन अभी विशेषकर जैसे आपदा मानसून सीजन आने वाला है तो उसके पहले सभी तैयारी हमारी होनी चाहिए। नालों की सफाई या सड़कों ये सब जो ये इमीडिएटली और त्वरित गति से करने के निर्देश किए गए।
1: इससे पहले मुख्य सचिव ने बोराड़ी क्षेत्र में स्थित राजकीय मॉडल प्राथमिक विद्यालय बोराड़ी स्टेडियम आंगनवाड़ी केंद्र डुंगीधार और श्रीदेव सुमन पुस्तकालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% बनाए रखने का निर्णय लिया है जबकि नीतिगत रेपो दर को तटस्थ रखा गया है।
3: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से एलएएफ के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है।
4: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार सुन रहे हैं। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में आज हरिद्वार में औद्योगिक इकाइयों के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक ने चारधाम यात्रा के दौरान उत्पन्न होने वाली यातायात चुनौतियों और आगामी कांवड़ यात्रा तथा कुंभ मेले की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों के पदाधिकारियों से यातायात प्रबंधन और व्यवस्थापन के लिए तैयार की जा रही कार्य योजना पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। साथ ही आश्वस्त किया कि प्रशासन द्वारा तैयार की जा रही योजना में सभी पक्षों के हितों और आवश्यकताओं का समुचित ध्यान रखा जाएगा। बैठक में यातायात व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने, औद्योगिक गतिविधियों पर न्यूनतम प्रभाव सुनिश्चित करने, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने सुझावों के आधार पर समन्वित और व्यवहारिक कार्य योजना तैयार करने की बात कही। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस क्रम में बागेश्वर में वन विभाग द्वारा बिलखित क्षेत्र में व्यापक पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बृहद स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाया गया और भागीरथी क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान संचालित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, स्कूली छात्रों, स्वयंसेवी संगठनों और ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। प्रभागीय वनाधिकारी आदित्य रत्ने ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिन का अभियान नहीं बल्कि सबकी सतत जिम्मेदारी है।
5: एक्चुअली एक दिन करने से ऐसे तो कुछ नहीं होगा, ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है या एक्सरसाइज है जिससे लोगों को हम लोग संदेश देना चाह रहे हैं कि आपकी जो धरती है चाहे ये जो पर्यावरण है यही सब चीज़ का सोर्स है। हमारा जो हवा है, लकड़ी है, पानी है, सब चीज़ जो नेचुरल चीज़ जो हम लोग डेली यूज करते ये सबका जो स्रोत है वो पर्यावरण ही जो एनवायरमेंट ही, तो ये सब हम सबका

0: दायित्व है कि इसको हम लोग संजो के रखें और इस तरीके से यूज करें कि हमारी जो आने वाली भावी पीढ़ी है वो भी इसका यूज करता है। तो इस एक्सरसाइज के माध्यम से हम सबों को ये संदेश देना चाह रहे थे।
1: वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सिटकुल में आयोजित कार्यक्रम में रुद्राक्ष का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न कंपनियों और संस्थाओं से जिले को हरा भरा रखने का आह्वान किया।
2: देखिए, पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे जनपद में विभिन्न जगहों पर वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है हरित हरिद्वार अभियान के तहत, और साथ ही हरित कुंभ 2027 के अभियान को लेते हुए आज से जगह जगह वृक्षारोपण किया जाएगा। आज सिरपुर में यहाँ पर एक बहुत ही डिग्रेडेड सी लाइन थी जहाँ पर जंगल झाड़ी उगी हुई थी, काफी यहाँ पे जल भराव की भी समस्या थी, इसको डेवलप किया गया है। और अन्य जितने भी पंप्स यहाँ पर कंपनीज काम कर रही है और कॉपरेट कर रही है वृक्षारोपण में, इंडस्ट्रियल एरिया में जरूरी है कि हमारे ग्रीन बेल्ट भी मेंटेन रहे, इसको लेकर अच्छा काम किया जा रहा है।
1: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज नैनीताल स्थित लोक भवन परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिवस का संकल्प नहीं बल्कि जीवन शैली का अभिन्न अंग होना चाहिए। उन्होंने नागरिकों से हरित पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक पौधरोपण और जनभागीदारी का आह्वान किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने अगले पर्यटन सीजन से पार्क के अंदर प्लास्टिक की पानी की बोतलों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। इसके स्थान पर पर्यटकों को कांच की बोतलों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण कम होगा और जंगल का प्राकृतिक वातावरण सुरक्षित रहेगा। इसके तहत पर्यटकों से पानी और कांच की बोतल का शुल्क प्रवेश द्वार पर लिया जाएगा। सफारी पूरी होने के बाद अगर पर्यटक बोतल को सुरक्षित अवस्था में वापस जमा कर देते हैं तो बोतल की निर्धारित राशि उन्हें लौटा दी जाएगी। इस व्यवस्था से न केवल कांच की बोतलों का पुनः उपयोग संभव होगा बल्कि पर्यटक भी बोतलों को सुरक्षित रखने के लिए प्रोत्साहित होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जिले के भीमताल में 96,71,00,000 रुपए लागत की 13 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने नई दिल्ली में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। टिहरी में आगामी कांवड़ यात्रा और कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर पुलिस ने उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश में पौधरोपण कार्यक्रमों का आयोजन, पर्यावरण संरक्षण का दिया गया संदेश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

शर्मा बंधु से ये भक्ति वंदन अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम का समापन करते हैं एक और भजन से। गायक कलाकार हैं उदित नारायण।

उदित नारायण के गाए इसी भजन के साथ अब आज का भक्ति संगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:50 हुआ चाहते हैं। अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने देहरादून केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: पर्वती अंचलु का खास कार्यक्रम ग्राम जगत
1: नमस्कार आकाशवाणी देहरादून बटी गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी मी नेहा। पहली मुख्य समाचार। मुख्य सचिव आनंद बर्धनन नई टिहरी में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का दगड़ा विकास कार्यों की समीक्षा करी। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावतन प्रदेश का सभी विद्यालयों में एनसीसी एनएसएस और स्काउट गाइड की इकाइयों को गठन करने का निर्देश देनी। नैनीताल जिला का हल्द्वानी वन प्रभाग में मानव वन्य जीव संघर्ष की रोकथाम खुणी एआई आधारित स्मार्ट कैमरा लगाने की पहल करे गए और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश का विभिन्न जिलों में पौधरोपण कार्यक्रम को आयोजन पर्यावरण संरक्षण को दिए गए संदेश। मुख्य सचिव आनंद बर्धनन आज नई टिहरी में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का दगड़ा विकास कार्यों की समीक्षा करी। उन बोली कि विकास कार्यों में अगर कै प्रकार की प्रशासनिक या शासन स्तर की बाधा छ तो वहां को जल्दी समाधान करे जालो। मुख्य सचिवन लगन वाला बसग्याल ते देखी कि संबंधित अधिकारियों ते पहली बटी सभी तैयारियां सुनिश्चित करने का दी निर्देश।
2: विभिन्न स्कीम्स प्रोग्राम्स की जनपद अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई और जो कार्य

0: गतिमान है उसको और स्पीडली करने के निर्देश दिए गए सभी संबंधित विभागों ने। और अगर कोई वैसे इश्यूज थे जिसको शासन स्तर पर निस्तारण होना है तो वो भी डीएम को कहा गया है कि उसको आपको हर लेवल पे। लेकिन अभी विशेषकर जैसे आपदा मानसून सीजन आने वाला है तो उसके पहले से भी तैयारी हमारी होनी चाहिए, नालों की सफाई या सड़कों ये सब जो ये इमिडिएटली और त्वरित गति से करने के निर्देश किए गए।
1: यहां से पहले मुख्य सचिव ने बौराड़ी क्षेत्र में स्थित राजकीय मॉडल प्राथमिक विद्यालय, बौराड़ी स्टेडियम, आंगनबाड़ी केंद्र ढूंगीधार और श्रीदेव सुमन पुस्तकालय को निरीक्षण करी के व्यवस्थाओं को जायजा भी लेने। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने प्रदेश का सभी विद्यालयों में एनसीसी, एनएसएस और स्काउट गाइड की इकाइयों को गठन सुनिश्चित करने का निर्देश देने ताकि प्रत्येक छात्र छात्रा ते अनुशासन, नेतृत्व और सामाजिक सेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेने को अवसर मिल सको। उन विद्यालयों में ड्रॉप आउट दर ते शून्य कन खुणी प्रभावी कार्य योजना तैयार कन पर भी विशेष बल देने। पौड़ी गढ़वाल का श्रीनगर में आयोजित विभाग की समीक्षा बैठक में डॉक्टर रावतन बोली कि राज्य सरकार विद्यार्थियों ते गुणवत्तापूर्ण समावेशी और छात्र केंद्रित शिक्षा उपलब्ध करोना खुणी प्रतिबद्ध। उन अधिकारियों ते विद्यालय में डिजिटल शिक्षा ते बढ़ावा दियोन, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना को व्यापक प्रचार प्रसार कन और पात्र विद्यार्थियों ते ये को अधिकतम लाभ दिलोना का निर्देश देने। शिक्षा मंत्री ने छात्र संख्या का आधार पर विद्यालयों का उच्चीकरण, डी श्रेणी विद्यालयों का निर्माण कार्यों कुणी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कन, विकास खंडवार मात्राकरण और शिक्षकों की पदोन्नति संबंधी मामलों में तेजी लियोना को निर्देश भी देने। बरसाती सीजन और डेंगू का संभावित खतरा ते देखदा नगर निगम देहरादून ने विशेष अभियान शुरू करयाले। महापौर सौरभ थपलियाला ने पहला चरण में निगम परिसर से लगभग 15 लार्विसाइडल टैंकरों ते विभिन्न क्षेत्रों और वार्डों कुणी हरी झंडी दिखे की रवाना करयाली। यू टैंकर शहर का संवेदनशील क्षेत्रों, जल भराव वाला स्थानों, नालों, खाली भूखंड, सार्वजनिक स्थलों और अन्य संभावित मच्छर प्रजनन क्षेत्रों में नियमित रूप से लार्विसाइडल छिड़काव और उपचारात्मक कार्यवाही करला।
2: डेंगू जो है वो पूर्व के सालों में भी और महामारी के तौर पे फैलता आया है। इसको रोकथाम के लिए नगर निगम ने जो एंटी डारवा अपने टैंकर्स है उनको रवाना किया है। ये वार्डों में जाके और जहाँ जहाँ पे भी पानी वगैरह इकट्ठा होगा, जहाँ पे भी लार्वा पनपने की उम्मीद होगी, ऐसी जगहों पर जो केमिकल्स का छिड़काव हम लोगों के द्वारा किया जाएगा जिससे कि लार्वा उत्पन्न ना हो सके और डेंगू ना फैल सके। डेंगू के लिए हमने फॉगिंग जो है वो पूरे अपनी गली गली मोहल्लों में हमारी फॉगिंग भी हो रही है और साथ साथ एंटी लार्वा टैंकर्स भी जा रहे हैं। इसके अलावा हम प्रचार प्रसार भी जो है वो डेंगू के लिए और लोगों को समझाने का काम भी कर रहे हैं।
3: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जानो जे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
1: नैनीताल जिला का हल्द्वानी वन प्रभाग में मानव वन्य जीव संघर्ष की रोकथाम कुणी एआई आधारित स्मार्ट कैमरा लगाने की पहल करेंगे। नंधौर वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा का समीप का संवेदनशील गांव को निकट यू कैमरा लगे गए न। ई परियोजना का तहत स्थापित करे जाने वाला कैमरा अत्याधुनिक तकनीकी से लैस छिन। प्रभागीय वन अधिकारी कुंदन कुमारन बताए कि बणों का समीप गांव में वन्य जीवों को आवागमन बण्यु रौंद, जहाँ से मानव वन्य जीव संघर्ष और किसानों के फसल नुकसान को खतरा बण्यु रौंद और इले ही गांव का समीप नई तकनीकी का कैमरा लगाए गए।
4: मानव वन्य जीव संघर्ष की रोकथाम के लिए हल्द्वानी वन प्रभाग द्वारा जो हमारे जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं उसमें एआई आधारित कैमरा लगाए गए हैं। जो वन्य जीव हैं जैसे हाथी, गुलदार, बाघ, भालू, इनको देख के और तुरंत जो है हमें अलर्ट भेज रहे हैं। इसके अलावा जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम हमने लगाए हैं तो तुरंत उसको जो है ये अलार्म के माध्यम से लोगों को भी अलर्ट कर रहे हैं।
1: वकी रेंजर प्रदीप कुमार पंतन बते कि यू कैमरा उन गांव में लगे जाला जख वन्य जीवों को आवागमन लगातार रोंदो।
5: ये छकाता रेंज के अंतर्गत ग्राम तारानवाड़ में यह कैमरा स्थापित किया गया है। ये जानवरों की पहचान करके कोई भी वन्यजीव गांव की तरफ जब आते हैं, चाहे हाथी हो, भालू हो या टाइगर हो, कोई भी जानवर हो, उस कैमरे की जद वहाँ आ जाता है तो ऑटोमेटिकली उसको पहचान कर एक साइरन के माध्यम से वहाँ आवाज दे देता है, लोगों को अलर्ट करता है। और इसकी निगरानी जो है प्रभाग स्तर पर हमारे मास्टर कंट्रोल रूम में ये सीधे जुड़ा हुआ है।
1: ग्रामीण नरेश चंद सुयाल को बोंच की कैमरा लगाने से उन्हें काफी फायदा होने चाहिए।
6: काफी फायदा हो रहा है कि हमारी फसलों को काफी बचत हो रही है। पहले जानवर आता था तो पता नहीं लगता था, काफी नुकसान हो जाता। अब जो है जानवर आता है तो ये थोड़ा सायरन देता है तो इससे हम अलर्ट भी हो जाते हैं और आवाज सुन के जानवर थोड़ा दूर भी चले जाते हैं। फायदा तो हो रहा है इससे।
1: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज प्रदेश का विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में पौधारोपण करी की पर्यावरण संरक्षण को संदेश दिए गए। ये क्रम में बागेश्वर में वन विभाग द्वारा बिलखेत क्षेत्र में व्यापक पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम आयोजित करे गए। ये दौरान वृहद स्तर पर पौधरोपण अभियान चले गए और भागीरथी क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान संचालित करी की पर्यावरण संरक्षण को संदेश दिए गए। कार्यक्रम में वन विभाग का अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, स्कूली छात्रों, स्वयंसेवी संगठन और ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। प्रभागीय वन अधिकारी आदित्य रत्नन बोली कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिन को अभियान नहीं च बल्कि सबकी सतत जिम्मेदारी च।
7: एक्चुअली एक दिन करने से ऐसे तो कुछ नहीं होगा, ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है या एक्सरसाइज है जिससे लोगों को हम लोग संदेश देना चाह रहे हैं कि आपकी जो धरती है, चाहे जो पर्यावरण, यही सब चीज का सोर्स है। हमारा जो हवा है, लकड़ी है, पानी है, सब चीज जो नेचुरल चीज जो हम लोग डेली यूज करते हैं, ये सबका जो स्रोत है वो पर्यावरण ही, जो एनवायरमेंट ही, तो ये सब हम सबका दायित्व है कि इसको हम लोग संजो के रखे और इस तरीके से यूज करें कि हमारी जो आने वाली भावी पीढ़ी है वो भी इसका यूज करता है। तो इस एक्सरसाइज के माध्यम से हम सबों को ये संदेश देना चाह रहे थे।
1: वही हरिद्वार का जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सिडकुल में आयोजित कार्यक्रम में रुद्राक्ष को पौधारोपित करी। ये अवसर पर उन्होंने विभिन्न कंपनियों और संस्थानों से जिला ते हरियों भरियों बनाने को आह्वान करी।
8: देखिए पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे जनपद में विभिन्न जगहों पर वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है हरित हरिद्वार अभियान के तहत, और साथ ही हरित कुंभ 2027 के अभियान को लेते हुए आज से जगह जगह वृक्षारोपण किया जाएगा। आज सिडकुल में यहाँ पर एक बहुत ही डिग्रेडेड सी लाइन थी जहाँ पर जंगल झाड़ी उगी हुई थी, काफी यहाँ पे जल भराव की भी समस्या थी, इसको डेवलप किया गया है। और अन्य जितने भी फर्म्स यहाँ पर कंपनीज काम कर रही है और कोऑपरेट कर रही है वृक्षारोपण में, इंडस्ट्रियल एरिया में जरूरी है कि हमारे ग्रीन बेल्ट भी मेंटेन रहे, इसको लेकर अच्छा काम किया जा रहा है।
1: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज नैनीताल स्थित लोक भवन परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान का तहत रुद्राक्ष को पौधा लगे के पर्यावरण संरक्षण को संदेश देने। राज्यपाल ने नागरिकों से हरित पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और भावी पीढ़ियों खुणी स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना को अधिक से अधिक पौधरोपण और जनभागीदारी को आह्वान करी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने नई टिहरी में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का साथ विकास कार्यों की समीक्षा करी। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने प्रदेश का सभी विद्यालयों में एनसीसी, एनएसएस और स्काउट गाइड की इकाइयों को गठन करने का निर्देश दिनी। नैनीताल जिला का हल्द्वानी वन प्रभाग में मानव वन्य जीव संघर्ष की रोकथाम होनी एआई आधारित स्मार्ट कैमरा लगाने की पहल करे गए और विश्व पर्यावरण दिवस का अवसर पर प्रदेश का विभिन्न जिलों में पौधरोपण कार्यक्रमों को आयोजन करे गए और पर्यावरण संरक्षण को दिए गए संदेश। ये का दगड़ा ही गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हुए। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत।

ज्ञान जगत कार्यक्रम सुनील सब श्रोतान के आपको देवड़ी मनीष राग नमस्कार। देवड़ी आज बात करनु जो हमारे खेतन में फसल छू ऊपर जो मौसम छू यानी जलवायु परिवर्तन की प्रभाव पड़ो क्योंकि आपको सब देखने लागन होला कि आजकल कभी मौसम बहुत ज़्यादा गर्म या फिर आधी तूफान या फिर बहुत ज़्यादा दियो यानी बारिश है जाने। जलवायु परिवर्तन कारण बढ़ने वाले तापमान, अमित बारिश, बहुत ज़्यादा घाम और बाढ़ में फसलों पैदावार में बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरावट है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी या फिर एकदम घट जाने वजह फसलों जीवन चक्र में विकास ठीक तरीके नहीं हो पान और कृषि के भारी नुकसान पहुँचने लगूँ। जो फसल मौसम असर में होनी तो तापमान, बारिश और हाऊ जास मौसम में वृद्धि और पैदावार दिनों पर असर डालू। देखो जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी में हमारे कुछ फसल सूख सकनी और ज़्यादा बारिश में कुछ और फसल सड़क खतरे बढ़ी रहूँ और ये फसलों की वृद्धि स्वास्थ्य और जो पैदावार छू उसे प्रभावित करूँ। और जब मौसम सामान्य रहूँ तो फसलों के पर्याप्त पानी और ऊर्जा मिलूँ जैल उनार विकास संतुलित रहूँ। लेकिन जब तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जा तो या फिर बारिश कम हो गई तो फसलों के सूखा या फिर बीमारी के लिए सामना करना पड़ो जैल उनार पैदावार घट जाए। यह एक वजह किसान मन की मौसमक पूर्वानुमान और बदलाव के ध्यान में धरते हुए अपन खेत तक योजना बढ़ा सकें जैल फसलों के सुरक्षित और लाभकारी बढ़ाई जा सकूँ। क्योंकि जब मौसम अनुकूल हो तो फसलों के पर्याप्त जल, गर्मी और पोषक तत्व मिलने जैल उन्हार बढ़ोतरी सुचारू रूप है सके। जैसे उदाहरण जी हम कह सकनों कि गेहूँ और चावल जैस प्रमुख फसल बारिश यानी दियो पर निर्भर करनी। अगर सही वक्त पर पर्याप्त दियो बारिश नहीं होली तो उन्हार पैदावार ले कम हो। यह तरीका फसलों की गुणवत्ता पर मौसमक उतार चढ़ाव दीर्घकालिक असर पड़ो जैल किसानों के अपन कृषि कार्य में सावधानी और रणनीति अपनों को जैल आधुनिक खेत में मौसम पूर्वानुमान और जलवायु परिवर्तन अध्ययन अत्यंत आवश्यक है जैल फसलों सुरक्षा और उत्पादन पड़ी रहो। देखो किले की जलवायु परिवर्तन फसलों पर असर एक वैश्विक चुनौती बढ़ गई जो कृषि उत्पादन में न केवल प्रभावित करने लग रहे बल्कि किसान मन की न जीवों को पाजने के लिए खतरे में टन लग रहे। बढ़ने तापमान और ज़्यादा वर्षा होने कारण कई परंपरागत फसल अपन प्राकृतिक बढ़वार के हरोण लग रही जैसे गेहूँ, चावल और कॉफ़ी जैस फसलों पैदावार बदलते मौसम वजह कठिन लग रहे। सूख, बाढ़ और असामान्य तापमानिक घटनाओं में फसलों की जो गुणवत्ता छू वो कम होने लग रहे जैल खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता जीने पर असर पड़ने लग रहा। यह एक समाधान लीजिए किसानों के जलवायु अनुकूल वाल तकनीकी जैसे कि नई किस्मों का उपयोग, बेहतर सिंचाई प्रबंधन और मौसम पूर्वानुमान आधार पर खेती उपयोग करना जरूरी है। वो जैल हम भविष्य में ये बदलाव के सामना भली के कर सकन। तो देखो ये तो छी आप कुछ बातचीत अखिल आप लोगों का मनोरंजन और आपको सुनानू प्रदीप कुमार गाइयो लोकगीत।

0: श्रोताओं, अब यह लोकगीत बाद अखिल आपका कार्यक्रम में सुनन हूँ। फूलों खेतकर भी स्वरोजगार करने वाले काश्तकार कुमारी दिव्या जोशी दग करी के क्षेत्र संकृत भेंटवार्ता और इंदु का भेंट करना लागरी मनीष शाह।
1: श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं ग्राम पंथगांव विकासखंड ताकुला जिला अल्मोड़ा के युवा काश्तकार बहन से, जिन्होंने फूलों की खेती कर स्वरोजगार अपनाया है। तो बातचीत तो इनसे आगे करते रहेंगे, पहले जानते हैं इनका परिचय। आपका नाम?
2: नमस्कार, मैं दिव्या जोशी।
1: दिव्या जी, आपने जैसे कि फूलों की खेती अभी कर रखी है, तो कौन कौन से प्रजाति आपने अभी अपने खेतों में लगाई?
2: मेनली हम अभी डेमिस्क रोज का काम कर रहे हैं, जो कि गुलाब की एक उन्नत किस्म की वैरायटी है, जिससे रोज वाटर बनता है। ऑल इंडिया में डेमिस्क रोज से गुलाब जल बनता है, और इसकी अलग अलग वैरायटी होती है जो अलग अलग जलवायु को सूट करती है। तो हमने अभी डेमिस्क रोज अपने पहाड़ों पर लगा रखे हैं।
1: अच्छा, जैसे आपने कहा कि हमने इसको पहाड़ों में लगा रखा है, तो आपने भी इसको कितने खेतों में लगाया होगा?
2: इसे हमने 20 से 22 नाली जमीन पर भी लगा रखे हैं।
1: अच्छा, तो 20 22 नाली में आपने कहा हमने इसको लगा रखा है, तो पूरे इस जगह में आपने ये गुलाब के फूल लगाए हैं या कुछ और भी लगाया?
2: वैसे हमने बेसिकली गुलाब के फूल ही लगा रखे हैं, लेकिन साथ में हम अभी रोजमेरी पर काम कर रहे हैं और तुलसी पर भी काम कर रहे हैं।
1: अच्छा, जैसे आपने गुलाब के फूल भी लगाए हैं और रोजमेरी पे भी आप काम कर रहे हैं और तुलसी पे भी आप कर रहे हैं, तो इसके लिए जो बीज है उसको आप कहाँ से लाते हैं?
2: बीज हमें सगंध पौधा केंद्र देहरादून है, सेलापुरी पे हमें यहाँ से प्रोवाइड करवाया था स्टार्टिंग पे, और उसके बाद अब हम खुद उसके बीज बना रहे हैं।
1: अच्छा, बीज बना रहे हो?
2: हाँ, तुलसी का हम बीज बनाते हैं। गुलाब और रोजमेरी कटिंग से हो जाता है, तो हम अपनी नर्सरी में अपने पेड़ों से कटिंग बनाते हैं और फिर पौधों को अपने खेत में लगाते हैं।
1: अच्छा, जैसे किसी ने इसकी शुरुआत करनी हो, फूलों की खेती को जैसे इसकी कटिंग करनी हो, इसके मतलब इसको आगे बढ़ाना, तो वो कैसे शुरुआत कर सकता है जैसे आपने ये कर रखा है?
2: तो अभी सगंध पौधा केंद्र की बहुत सारी स्कीम चल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सीधे सगंध पौधा केंद्र से कांटेक्ट करना चाहिए। वो आपकी इस पे काफी अच्छी हेल्प कर लेंगे, और उसके बाद अगर आपको हम लोगों से भी कांटेक्ट करना है, तो हम भी आपको इसके पौधे और ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं।
1: अच्छा, और साथ ही आपने कहा हम तुलसी की भी खेती इसमें कर रहे हैं, तुलसी का बीज कैसे बनाते हैं?
2: तुलसी स्टार्टिंग में हमने तुलसी का बीज भी सगंध पौधा केंद्र से लिया था, तो फिर हमने उसका अर्क निकाला, और कुछ पौधे हम छोड़ देते हैं जो मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद उसमें बीज जब बन जाते हैं तो फिर हम उसे निकालते हैं, उसके बीज को हार्वेस्ट कर लेते हैं।
1: अच्छा, जैसे आपने कहा हम इसका अर्क निकालते हैं, तो अर्क निकालने की विधि कौन सी हुई?
2: डिस्टिलाइजेशन मेथड है, यानी कि जो अर्क को हम एक प्रेशर कुकर टाइप की हमारे पास मशीन है उसमें पकाते हैं, उसके बाद जाके हम उसकी स्टीम को स्टोर करते हैं, तो जो स्टीम है वही अर्क है।
1: अच्छा, जैसे आपने तीन चीजों की खेती कर रखी है, तो इसको आप एक मिश्रित खेती के रूप में करते हैं या फिर जैसे आपके पास 20-24 नाली जो जमीन है इसमें अलग अलग तरीके से आपने इसको किया है?
2: वैसे हमने इसके खेत बांट रखे हैं कि 15 नाली में गुलाब है, 2 नाली में तुलसी है, इतने नाली में रोजमेरी है, क्योंकि इसके लिए भूमि और मिट्टी भी अलग अलग चाहिए होती है। जैसे कि गुलाब में काफी मॉइस्चर वाले खेत चाहिए होते हैं और रोजमेरी में मॉइस्चर वाले खेत नहीं चाहिए होते हैं, तो इसलिए हमने अपनी जमीन अलग अलग एरिया में बांट रखी है।
1: अच्छा दीपा जी, जैसे आपने मिट्टी की बात करी, तो मिट्टी इसमें कौन सी क्वालिटी की सबसे अच्छी रहती है?
2: जो मॉइस्चर, जो जिसे हम चिकनी मिट्टी बोलते हैं।
1: अच्छा,
2: वो मिट्टी गुलाब उगाने के लिए काफी अच्छी है, और रोजमेरी के लिए एकदम ड्राई सॉइल चाहिए होता है, क्योंकि इसे पानी ज्यादा पसंद नहीं होता उसके प्लांट को।
1: अच्छा, और इन फूलों की जो मार्केट में डिमांड रहती है वो किस हिसाब से रहती है?
2: सर, इनकी डिमांड मार्केट में फूलों की नहीं रहती है, इनकी डिमांड रहती है रोज वाटर की और रोज ऑयल की। तो अभी तो हम रोज वाटर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि रोज ऑयल के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में फूल चाहिए होते हैं, और इसकी डिमांड हमारी काफी अच्छी रहती है। हम ऑल इंडिया में डिलीवर करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं, बल्क पर भी करते हैं और रिटेल पर भी करते हैं।
1: अच्छा, जैसे आपने कहा हम रोज वाटर पर काम कर रहे हैं, तो इसके लिए कौन से उपकरण या फिर इसमें कौन सी तकनीक इस्तेमाल में ली जाती है?
2: सर, रोज वाटर बनाने के लिए भी हम डिस्टिलाइजेशन मेथड ही यूज करते हैं, और इसके लिए हमारे पास मशीन है जो कि सगंध पौधा केंद्र से ही हमें मिली थी सब्सिडी में।
1: अच्छा, तो इसमें लगभग लागत कितनी आ जाती है और मुनाफा किस हिसाब से रहता है इसमें?
2: हाँ सर, ये तो जैसे पहाड़ों में आजकल खेती चल रही है अनाजों की, उस हिसाब से ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो अगर हमें मिनिमम 60% का लाभ हो जाता है 100% में।
1: अच्छा, तो दिव्या जी, आप इसको फूलों की खेती को कितने समय से कर रहे हैं?
2: सर हमने ये स्टार्ट किया था 2019-20 से, हमारी फैमिली ने स्टार्ट किया था,
1: अच्छा।
2: और अभी 2026-27 चल रहा है, तो अभी तक हम इसमें काम कर रहे हैं। और अभी कुछ टाइम से हमने अपना ब्रांड भी बना लिया है, कुमाऊं नेचुरल्स करके, तो
1: जी
2: अब हम अपने ब्रांड के थ्रू भी सेल कर रहे हैं और बल्क में भी सेल कर रहे हैं।
1: जी दिव्या जी, जैसे आप एक युवा काश्तकार हैं, आपके जहन में कैसे आया कि मैं फूलों की खेती करूं और फूलों की खेती करके मुझे इतना सारा फायदा होगा करके?
2: सर स्टार्टिंग में तो हमें सगंध पौधा केंद्र द्वारा प्लांट प्रोवाइड हुए थे, उसके बाद हमारी फैमिली ने इसमें काम करना शुरू किया, और फिर बल्क में जाता था थोड़ा बहुत। बहुत अच्छा हम काम नहीं कर रहे थे, हम थोड़ा बहुत ही काम कर रहे थे, लेकिन मार्केट में इसकी डिमांड काफ़ी थी। हम लोग अपने डेली यूज़ पे ही रोज़ वाटर का यूज़ करते हैं,
1: अच्छा
2: तो मैंने सोचा कि अगर बल्क में जैसे हम दे रहे हैं, तो अगर हम अपने रिटेल पर ऐसे ब्रांड बना के हम बेचेंगे तो लोगों पर थोड़ा सा ट्रस्ट आ जाता है।
1: जी,
2: तो फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालना भी शुरू किया कि हम ऐसे काम कर रहे हैं, और उसके बाद अपना ब्रांड लॉन्च किया। तो अभी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस है कि पहाड़ों में लोग गांव में काम कर रहे हैं, नेचुरल तरीके से रोज वाटर बना रहे हैं, तो लोगों की डिमांड को देखते हुए मैंने अपना ब्रांड बनाना उचित समझा।
1: अच्छा। और दिव्या जी, जैसे आपने इसकी शुरुआत, आपकी फैमिली ने इसकी शुरुआत 2019-2020 से करी, और अभी हमारा 2026 चल रहा है, तो इसमें हमारा जो 6-7 साल का ये पूरा आपका अनुभव हो चुका है, तो जब आपने शुरुआत करी थी और आज के समय में आपको इसमें कितना परिवर्तन देखने को मिला?
2: सर जब हमने शुरुआत की थी, तब हमने एक नाली जमीन से शुरुआत की थी,
1: जी
2: तो जैसे हमें थोड़ा सा फायदा नजर आया, तो हमने धीरे धीरे फिर काम बढ़ाया।
1: अच्छा
2: एक्सपीरियंस के साथ हमने अपनी फार्मिंग में चेंज लाए, पहले हमने सिर्फ गुलाब पर काम किया, फिर हम तुलसी पे भी आए और रोजमेरी पे भी आए, और आगे भी हम कई और एरोमेटिक प्लांट्स पे काम करेंगे एक्सपीरियंस के साथ।
1: जी, तो दिव्या जी, आपने इसके कोई मतलब कामगार भी रखे हैं या भी आप खुद ही इसको करते हैं?
2: नहीं सर, हमारे साथ 4-5 हेल्पर लगते हैं सीजन टाइम पे,
1: जी
2: गोड़ाई करने के लिए, कटिंग करने के लिए, तो फिर हमारे हेल्पर आते हैं काम करने के लिए।
1: अच्छा, तो जैसे आप हेल्पर आते हैं, तो फिर उसके आपकी जो दिन का जो आय व्यय होता है, मानदेय होता है, वो आपको अपनी तरफ से इनको देना होता होगा?
2: हाँ हम वो देते हैं, वो हमारा 60% लाभ से अलग है, मतलब हमें 60% शुद्ध लाभ हो जाते हैं अपने बिजनेस से।
1: अच्छा, तो दिव्या जी, जैसे आपने इतनी अच्छी फूलों की खेती कर रखी है, और जो हमारे आपकी बातों को सुनने वाले श्रोता हैं और जो हमारे बेरोजगार युवा युवतियां हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे आपने इतना अच्छा फूलों का वर्क घर में रहके ही किया है, आप क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे और युवा बेरोजगारों को?
2: मैं तो अभी इन लोगों से ये बोलना चाहूंगी कि कुछ भी काम करना टफ नहीं होता है, और आजकल हमारे पास इतने सारे सोर्स हैं, पहले से सिर्फ हम अनाज पे ही डिपेंड रहते थे और उसमें भी हमें फायदा नहीं होता था, लेकिन अभी गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है,
1: जी
2: एरोमेटिक प्लांट्स की भी बहुत ज्यादा डिमांड है, इसको उगाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं है, इनकी केयर में ज्यादा मेहनत भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि लोगों को साइड में एक ना एक बार इस बिजनेस को ट्राई करना चाहिए, एरोमेटिक प्लांट्स पे आना चाहिए। अगर उन्हें आगे को सक्सेस दिखती है तो उन्हें जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और मैं कई सालों से अपनी फैमिली के साथ ही काम कर रही हूँ, तो मुझे यकीन है कि हर अगर सब लोग जुड़े इससे, एरोमेटिक प्लांट्स के बिजनेस से जुड़े, तो हम उत्तराखंड को बहुत आगे ले जा सकते हैं एरोमेटिक प्लांट पे, और हमें बाहर नौकरी करने की भी जरूरत नहीं है, हम अपने साथ और लोगों को भी यहीं पर जॉब दे सकते हैं।
1: बहुत अच्छी आपने बात की, क्योंकि जैसा कि क्या होता है कि हमारे जो फसल होती है उसमें हमारे पहाड़ी एरिया होने के नाते क्या होता है कि जंगली जानवरों का बहुत ज्यादा खौफ रहता है, तो मेरे ख्याल से इसमें जंगली जानवरों का नुकसान भी बहुत कम रहता है।
2: जी
1: तो दिव्या जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें फूलों की खेती को लेकर दी, आपकी बातों को सुनकर जो हमारे बेरोजगार युवा हैं वो लोग भी आगे आएंगे, आपने हमारे साथ बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू सर।
0: तेरे लपुन सुनी फूलों खेती कर भी स्वरोजगार करने वाले ग्राम पंथगांव विकासखंड ताकुल जिल अलमड़ा काश्तकार कुमारी दिव्या जोशी तक करी की क्षेत्र संकृत भेंटवार्ता और इंदुगढ़ भेंट करना अग्र मनीष शाह। देखो आप बात करनू दवाई वाल पौधों के बारे में, दवाई वाल पौध छिनुआ हमारे लिए जी आज युवा एक भल माध्यम बढ़ सकनी, के लेकिन हिमालयी जगन पर जैसिक उत्तराखंड और हिमाचलक जलवायु जड़ी बूटियों के लिए जी बहुत ज़्यादा अनुकूल हों। यह मनरेगा और राष्ट्रीय आयुष मिशन के माध्यम पर स्थानीय स्तर पर रोजगार, महिलाओं के सशक्तिकरण और किसानों को आय में भारी वृद्धि अवसर प्रदान करूं। महिलाएं समूह बढ़ावेर, औषधीय पौधों खेती के लिए जी प्रस्ताव डालबेर वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकनी। यह के अलावा केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड यानी एमपीवी के माध्यम से किसानों के सब्सिडी और प्रशिक्षण इमें दी जा। रोजगारक दृष्टि देखी जाओ तो पर्वतों पर बंजर पड़ी हुई भूमि उपयोग करवे या फिर जो हमारे बंजर गाड़ छिन उमें जैविक तरीकल जड़ी बूटी उगुण और पौधन के सुगुण छटाई करण और तेल निकाउन और औषधिक आयुष मंत्रालय की योजना के तहत सिद्ध फार्म कंपनी या बाजारों में बेचण रोजगारों एक प्रमुख साधन है सकूँ। हमारे राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों में औषधि

और सुगंधित पौधों, खेती, रोजगार और आर्थिक समृद्धि एक बेहतरीन साधन बनन लग रहो। और यो पलायन रोकण और किसानों आय बढ़ू मैंने बहुत ही ज्यादा मददगार छू। देखो औषधीय खेती प्रमुख लाभ ये जंगली जानवर व सुरक्षा जैसे कि कुटकी और रोजमेरी जैस कई पौधों के जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुँचून, जेल फसल सुरक्षित रहें। यह पारंपरिक जड़ी बूटियों में पानी कम आवश्यकता है और शुरुआत में कम निवेश में करना पड़ो। और फार्मा और आयुर्वेदिक उद्योगों में इनार भारी मांग कारण जो हमारे किसान से उनके बेहतर मुनाफा मिल जा। और दगड़ो सबन भी भल बात ये चुकी ये किसान मन की दोगुनी आय बढ़ जा, ये पर्वतीय क्षेत्र में रोजगारक नए अवसर पैदा होनी, किले की यहाँ जलवायु और माट ये पौधनक लीजिए भल मानी जा। ये किसानों खेती दगाड़े दगाड़े भलाई प्राप्त हैं और इनमें हमारे युवा मन की और महिलाएं ये जुड़बेर आत्मनिर्भर बढ़ सकनी, जेल उनर आजीविका और क्षेत्र अर्थव्यवस्था द्वारा दिए मजबूत हो। जब औषधीय पौधों खेत ठूल पैमाने पर होल तो यह स्थायी विकास के लिए बढ़ावा मिलो, किले की पर्यावरण के लिए एक फायदेमंद छू। जैसे कम रसायनक उपयोग, जैविक खेती अवसर और पारंपरिक ज्ञानक संरक्षण यह पहाड़ों में ले आत्मनिर्भरता बढ़ी हो और मन के अपूर्ण संसाधनों में बेहतर तरीके जुड़ पाल। और इनमें नान किसानों के लिए आयुर्वेद और हर्बल से खेत में जोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विशेष जोर देना जाने लग रहा। जब हम औषधि पौधों खेत के बढ़ावा दें तो यह न केवल रोजगारक अवसर बढ़नी बल्कि मनखिनक जीवन शैली ले इनमें सुधार हूँ। उदाहरण दीजिए युवा पीढ़ी के शहरों और पलायन करने की जरूरत कम पड़े और उनके अपन गाँव या जग में स्थिर आजीविका मिले। यह के अलावा स्थानीय स्तर में उत्पादन बढ़ना वजल कच्चे मालक उपलब्धता बढ़ जल दगड़ा यो परिस्थिति संतुलन बनाए रखने में मदद करो, किले की औषधीय पौध कम संसाधनों में भल उपज दे सकनी। यह न केवल आर्थिक आत्मनिर्भर लूँ बल्कि पारंपरिक ज्ञान पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास के लिए बढ़ावा दी, जैल एक संतुलित और उज्ज्वल भविष्य आधार बढ़ूँ।

सारे जंगल में। देखियो शंकर उपति गाई अल्लाह पूर्ण गीत सुनो और ये गीत दग आज ग्राम जगत कार्यक्रम इतिके संपन्न हो भोग फिर वेट करन। तब तक लीजिए अब दगड़ी मनी साग दियो आ गया। नमस्कार।

अभी आप ग्राम जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:30 हुआ जाते हैं। अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार कुमाऊनी में, जिसे हम अपने देहरादून केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों दगड़ में योगिता बिष्ट। पली मुख्य समाचार। मुख्य सचिव आनंद बर्दनल नए टिहरी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों दगड़ विकास कार्यों की समीक्षा करें। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल प्रदेशक सभी विद्यालयों में एनसीसी एनएसएस और स्काउट गाइडर इकाइयों गठन करने का निर्देश दी। नैनीताल जिला हल्द्वानी वन प्रभागम मानव वन्य जीव संघर्ष के रोकनक लीजिए एआई आधारित स्मार्ट कैमरा लगाना पहल करेंगे और विश्व पर्यावरण दिवस मौके पर प्रदेशक विभिन्न जिलों पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन पर्यावरण संरक्षण दी गो संदेश। अब समाचार विस्तारल। मुख्य सचिव आनंद बर्दनल आज नई टिहरी में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों दगड़ विकास कार्यों की समीक्षा करी। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में अगर कसले प्रकारक प्रशासनिक या शासन स्तरक बाधा छो तो वह जल्दी समाधान करी जल। मुख्य सचिव आने वाले मानसून के देखते हुए संबंधित अधिकारियों के पलिका बटी सभी तैयारी करने का निर्देश दी।
1: विभिन्न स्कीम्स प्रोग्राम्स की जनपद अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई और जो कार्य गतिमान है उसको और स्पीडली करने के निर्देश दिए गए सभी संबंधित विभागों ने। और अगर कोई वैसे इश्यूज थे जिसको शासन स्तर पर निस्तारण होना है तो वो भी डीएम को आगे आए उसको आपको लेकिन अभी विशेषकर जैसे आपदा मानसून सीजन आने वाला है तो उसके पहले से भी तैयारी हमारी होनी चाहिए। नालों की सफाई या सड़कों जो ये इमीडिएटली

0: और त्वरित गति से करने के निर्देश दिए गए।
1: यह हवेली मुख्य सचिवल बोराड़ी क्षेत्र में स्थित राजकीय मॉडल प्राथमिक विद्यालय बोराड़ी स्टेडियम आंगनबाड़ी केंद्र ढूंगीधार और श्री देव सुमन पुस्तकालय निरीक्षण करबे व्यवस्थाओं जायजा ले लियो। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल प्रदेशक सभी विद्यालयों में NCC NSS और स्काउट गाइडक इकाइयों गठन करने के निर्देश दिए ताकि हर छात्र छात्रा के अनुशासन नेतृत्व और सामाजिक सेवा हबे जुड़ी गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिल सको। उन्होंने विद्यालयों में ड्रॉप आउट दर के शून्य करने के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करने पर विशेष बल दियो। पौड़ी गढ़वालक श्रीनगरम है विभागक समीक्षा बैठक डॉक्टर रावतल को कि राज्य सरकार

0: ताकि हर छात्र छात्रा के अनुशासन, नेतृत्व और सामाजिक सेवा हेबे जुड़ी गतिविधियों में भाग लेनक मौक मिल सको। उन्होंने विद्यालयों में ड्रॉपआउट दर के शून्य करनक लीजी प्रभावी कार्य योजना तैयार करन पड़े विशेष बल दियो। पौड़ी गढ़वालक श्रीनगरम है विभागक समीक्षा बैठक डॉक्टर रावतल कौ की राज्य सरकार विद्यार्थियों के गुणवत्तापूर्ण समावेशी और छात्र केंद्रित शिक्षा उपलब्ध कराणक लीजी प्रतिबद्ध छु। उन्होंने अधिकारियों के विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा के बढ़ावा देण, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करण और पात्र विद्यार्थियों के एक अधिकतम फैद दिणानक निर्देश दी। शिक्षा मंत्री छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों के उच्चीकरण, डी श्रेणी विद्यालयों के निर्माण कार्यों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करण, विकास खंडवार मात्राकरण और शिक्षकों पदोन्नति संबंधी मामलों में तेज लाने का निर्देश दी। मॉनसून सीजन और डेंगू संभावित खतरे के देखते हुए नगर निगम देहरादूनल विशेष अभियान शुरू कर है। महापौर सौरभ थपलियालल पल्लीचरण में निगम परिसर बटी लगभग 15 लार्वी साइडल टैंकरों के विभिन्न क्षेत्रों और वार्डों के लिजी हरी झंडी दिखाबे रवाना करो। यू टैंकर शहरक संवेदनशील क्षेत्रों, जल भराव वाल जागों, नालों, खाल जागों, सार्वजनिक स्थलों और अन्य संभावित मच्छर प्रजनन क्षेत्रों में नियमित रूपल लार्वी साइडल छिड़काव और उपचारात्मक कार्रवाई करल।
1: डेंगू जो है वो पूर्व के सालों में भी और महामारी के तौर पे फैलता आया है। इसको रोकथाम के लिए नगर निगम ने जो एंटी लार्वा अपने टैंकर से उनको रवाना किया है। ये वार्डों में जाके और जहाँ जहाँ पे भी पानी वगैरह इकट्ठा होगा, जहाँ पे भी लार्वा पनपने की उम्मीद होगी, ऐसी जगहों पर जो केमिकल्स का छिड़काव हम लोगों के द्वारा किया जाएगा, जिससे कि लार्वा उत्पन्न ना हो सके और डेंगू ना फैल सके। डेंगू के लिए हमने फॉगिंग जो है वो पूरे अपनी गली गली मोहल्लों में हमारी फॉगिंग भी हो रही है और साथ साथ एंटी लार्वा टैंकर्स भी जा रहे हैं। इसके अलावा हम प्रचार प्रसार भी जो है वो डेंगू के लिए और लोगों को समझाने का काम भी कर रहे हैं।
0: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यो बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी। नैनीताल जिला हल्द्वानी वन प्रभागम मानव वन्य जीव संघर्षक रोकथामक लिजी AI आधारित स्मार्ट कैमरा लगाणक पहल करी जा रहे। नंधौर वन्य जीव अभ्यारण्यक सीमाक नजदीकक संवेदनशील गौनों को नजदीकक यू कैमरा लगाई जा रही। यह परियोजना के तहत लगाए जाने वाले कैमरा अत्याधुनिक तकनीक वाल छी। प्रभागीय वनाधिकारी कुंदर कुमारल बताया कि जंगों पास वाल गौनों में वन्य जीव आते रूनी जैल मानव वन्य जीव संघर्ष और किसानों फसल के नुकसान खतर बनी रू। इके देखते हुए नई तकनीक का कैमरा लगाए जा रही।
2: मानव वन्य जीव संघर्ष की रोकथाम के लिए हल्द्वानी वन प्रभाग द्वारा जो हमारे जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं उसमें AI आधारित कैमरा लगाए गए हैं। जो वन्य जीव हैं जैसे हाथी, गुलदार, बाघ, भालू, इनको देख के और तुरंत जो है हमें अलर्ट भेज रहे हैं। इसके अलावा जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम हमने लगाए हैं तो तुरंत उसको जो है ये अलार्म के माध्यम से लोगों को भी अलर्ट कर रहे हैं।
0: वहीं रेंजर प्रदीप कुमार पंतल बताया कि यू कैमरा उन गौनों में लगाई जा रही जहां वन्य जीवों का आवागमन लगातार बनी रू।
3: छकाता रेंज के अंतर्गत ग्राम तारा नवाड़ में यह कैमरा स्थापित किया गया है। ये जानवरों की पहचान करके कोई भी वन्य जीव गाँव की तरफ जब आते हैं, चाहे हाथी हो, भालू हो या टाइगर हो, कोई भी जानवर हो, उस कैमरे की जद वहाँ आ जाता है तो ऑटोमेटिकली उसको पहचान कर एक साइरन के माध्यम से वहाँ आवाज दे देते हैं, लोगों को अलर्ट करता है और इसकी निगरानी जो है प्रभाग स्तर पर हमारे मास्टर कंट्रोल रूम में ये सीधे जुड़ा हुआ है।
0: ग्रामीण नरेश चंद्र सुयालक कुणछू की कैमरा लगाणल उनके काफी फायद हो रो।
4: काफी फायदा हो रहा है कि हमारी फसलों को काफी बचत हो रही है। पहले जानवर आता था तो पता नहीं लगता था, काफी नुकसान हो जाता। अब जो है जानवर आता है तो ये थोड़ा साइरन देता है तो इससे हम अलर्ट भी हो जाते हैं और आवाज सुन के जानवर थोड़ा दूर भी चले जाते हैं। फायदा तो हो रहा है इससे।
0: विश्व पर्यावरण दिवसक मौक पर आज प्रदेशक विभिन्न जिलों में हई कार्यक्रमों में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षणक संदेश दी गो। यो क्रम में बागेश्वरम वन विभाग बटी बिलखेत क्षेत्रम व्यापक पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम आयोजित करी गो। एक दौरान वृहद स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाए गो और भागीरथी क्षेत्र विशेष स्वच्छता अभियान संचालित कर बेर पर्यावरण संरक्षणक संदेश दी गो। कार्यक्रम वन विभाग अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, स्कूली नांतिनों,

0: स्वयंसेवी संगठनों और गांव वालों खुशी खुशी भाग लियो। प्रभागीय वनाधिकारी आदित्य रत्नल को की पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिन का अभियान नहीं बल्कि सबूक सतत जिम्मेदारी छो।
1: एक्चुअली एक दिन करने से ऐसे तो कुछ नहीं होगा, ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है या एक्सरसाइज है जिससे लोगों को हम लोग संदेश देना चाह रहे हैं कि आपकी जो धरती है चाहे ये जो पर्यावरण यही सब चीज का सोर्स है। हमारा जो हवा है, लकड़ी है, पानी है, सब चीज जो नेचुरल चीज जो हम लोग डेली यूज करते ये सबका जो स्रोत है वो पर्यावरण ही जो एनवायरमेंट ही, तो ये सब हम सबका दायित्व है कि इसको हम लोग संजो के रखे और इस तरीके से यूज करें कि हमारी जो आने वाली भावी पीढ़ी है वो भी इसका यूज करता है। तो इस एक्सरसाइज के माध्यम से हम सबों को ये संदेश देना चाह रहे थे।
0: वहीं हरिद्वारक जिलाधिकारी मयूर दीक्षितल शिटकुल में है कार्यक्रम रुद्राक्षक बोट रोपो यो मौक पर नूल विभिन्न कंपनियों और संस्थाओं हेते जिल के हरी भरी बनाणक आह्वान करो।
2: देखिए पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे जनपद में विभिन्न जगहों पर वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है हरित हरिद्वार अभियान के तहत, और साथ ही हरित कुंभ 2027 के अभियान को लेते हुए आज से जगह जगह वृक्षारोपण किया जाएगा। आज सिरपुर में यहाँ पर एक बहुत ही डिग्रेडेड सी लाइन थी जहाँ पर जंगल झाड़ी उगी हुई थी, काफी यहाँ पे जल भराव की भी समस्या थी, इसको डेवलप किया गया है और अन्य जितने भी फर्म्स यहाँ पर कंपनीज काम कर रही है और कॉपरेट कर रही है वृक्षारोपण में इंडस्ट्रियल एरिया में जरूरी है कि हमारे ग्रीन बेल्ट भी मेंटेन रहे, उसको लेकर अच्छा काम किया जा रहा है।
0: विश्व पर्यावरण दिवसक मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंहल आज नैनीताल स्थित लोक भवन एक पेड़ माँ के नाम अभियान तहत रुद्राक्षक बोट लगबेर पर्यावरण संरक्षणक संदेश दियो। राज्यपाल नागरिकों हेते हरित पर्यावरणक संरक्षण और संवर्धन और आनवल पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाणक लिए ज्यादा है ज्यादा पौधरोपण और जन भागीदारी का आह्वान करो। अंत में मुख्य समाचार एक बार आई सुनो। मुख्य सचिव आनंद बर्दनल नई टिहरी जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों दगड़ विकास कार्यों की समीक्षा करी। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल प्रदेशक सभी विद्यालयों में एनसीसी, एनएसएस और स्काउट गाइड इकाइयों गठन करने का निर्देश दी। नैनीताल जिलक हल्द्वाणे वन प्रभागम मानव वन्य जीव संघर्ष के रोकने के लिए एआई आधारित स्मार्ट कैमरा लगाने की पहल करी गई और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रदेशक विभिन्न जिलों में पौधरोपण कार्यक्रमों का आयोजन करी गो। पर्यावरण संरक्षण दिगो संदेश यह के दगर कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन समाप्त हो। नमस्कार।

येशुदास हेमलता और साथियों को अभी आप बंधन बाहों का फिल्म सुन रहे थे। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है बॉडीगार्ड फिल्म से। आवाजें हैं राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल की।

फिल्म संगीत कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का समापन करते हैं श्रेया घोषाल और पपोन के गाए इस गीत से। फिल्म का नाम है बॉबी जासूस।

श्रेया घोषाल और पपोन के गए बॉबी जासूस फिल्म के गीत के साथ अब आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं नुसरत फतेह अली खान और साथियों की गई कव्वाली से।

Ba da ma ba ga ba da.

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: This June, make every drive feel smoother and every journey special.
4: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
3: Equipped with features like 360-degree camera, head-up display and safety through 6 airbags.
4: The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month.
3: Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
4: Hurry, offer still stocks last. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
5: Nexa. सबरस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राजश्री सचदेव से ये गीत।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
0: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: Summers into inspiring getaways. Step into a season of refined drives with exclusive benefits on your favorite Nexa car.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
4: Enjoy amazing benefits up to ₹25,000. Offer valid till 30th June.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today. Hurry. Offers for a limited time only. TNC apply.

शंकर महादेवन का गाया गीत अभी आप सुन रहे थे। प्रोग्राम के आखिर में हम आपको सुन पा रहे हैं एक और नगमा, आवाज आशा भोसले की है।

आशा भोसले के गाए इसी गीत के साथ अब आज का सबरस कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र मणि राजेश। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। हम एक बार फिर से मौजूद हैं नए कलेवर, नए रंग, नए अंदाज, एक नई शुरुआत के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल की हर बात। पहले मुख्य समाचार। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत का दबदबा, आज पहले दिन 5 स्वर्ण पदक जीते। भारत की अंडर 18 लड़कों की टीम पाकिस्तान को हराकर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची। लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हारी। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच कल से न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में आर प्रज्ञानंदा ने हमवतन डी गुकेश को हराया, खिताब की दौड़ में शामिल। और सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में कल मडगांव में भारतीय टीम का मुकाबला बांग्लादेश से होगा।

तो शुरुआत योगासन के साथ। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के आज पहले दिन भारत का दबदबा रहा। भारत के योगासन खिलाड़ियों ने दौ पर लगे 6 में से 5 स्वर्ण पदक जीते। योगासन का सीनियर पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक भारत के अभय बर्मन ने जीता। रजत इंडोनेशिया के अर्कन रियांतो ने अपने नाम किया, जबकि कांस्य पदक उज्बेकिस्तान के एलन के नाम रहा। सीनियर महिला वर्ग में भारत की रितु मंडल पहले स्थान पर रही। कजाकिस्तान की एजहन कोआन याशोबायवा दूसरे स्थान पर रही, जबकि तीसरा स्थान हांगकांग की लैम एनगा ने जीता। सीनियर ए पुरुष वर्ग में सिंगापुर के नथानियल तान लियांग एन पहले स्थान पर रहे। रजत पदक तंजानिया के कारिमुस्वाफी को मिला। भारत के सुमेर तीसरे स्थान पर रहे। सीनियर ए महिला वर्ग में भारत की रितु ठाकुर को स्वर्ण, अर्जेंटीना की नबीला सोल बराजा को रजत, जबकि कीनिया की अबू ओर सोलिना को कांस्य पदक मिला। सीनियर बी पुरुष वर्ग में भारत

कि रोशन थापा ने स्वर्ण पदक जीता। बांग्लादेश के मोहम्मद मामून खान बाबू को रजत और किर्गिस्तान के डेनियल रायकोव को कांस्य पदक मिला। ट्विस्टिंग बॉडी के सीनियर बी व्यक्तिगत वर्ग में भारत की ज्योति देउरकर को स्वर्ण पदक, ओमान की ओलिमुथु नवामानी को रजत और जापान की सारू क्यूई को कांस्य पदक मिला। तो ये थी बात योगासन की, और अब चलते हैं हॉकी के मैदान पर, जहां भारत की अंडर 18 लड़कों की टीम एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। जापान के काकामिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराया। खिताब के लिए कल भारत का मुकाबला जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई। सुनते हैं एक रिपोर्ट। सेमीफाइनल

0: टीम का हौसला आसमान की बुलंदियों पर होगा। अब उसका लक्ष्य चैंपियन बनना है। अंतिम चार के मैच में भारत ने अपने प्रदर्शन से यह दिखा दिया है कि बड़े मुकाबलों में भी यह टीम किसी भी चुनौती का सामना करने का मादा रखती है। एक समय भारतीय टीम 2-3 गोल से पिछड़ रही थी, लेकिन टीम ने शानदार जज्बा दिखाते हुए न सिर्फ वापसी की बल्कि पाकिस्तान को धूल चटाकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। यह मैच बेहद तेज रफ्तार वाला रहा। दोनों टीमों ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और गोल करने का मौका तलाशते रहे। आखिरकार आशीष तानीपूर्ति ने 12वें मिनट में गोल कर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। दूसरे क्वार्टर में पाकिस्तान ने जोरदार वापसी की। 27वें मिनट में आदिल ने भारतीय गोलकीपर को छकाकर स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। हाफ टाइम तक दोनों टीमें बराबरी पर थी। तीसरे क्वार्टर में 35वें मिनट में अली शाहरुख ने गोल कर भारत को 2-1 की बढ़त दिलाई, लेकिन पाकिस्तान ने तुरंत जवाब दिया और महज 2 मिनट के बाद मोहम्मद फरहान असलम ने गोल कर स्कोर को 2-2 कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने मैच में पहली बार बढ़त हासिल की जब 42वें मिनट में उजैर अहमद ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को 3-2 से आगे कर दिया। जहां पाकिस्तान की टीम का दबदबा दिख रहा था, लेकिन आखिरी क्वार्टर में भारतीय टीम ने ऐसा खेल दिखाया जिसने पूरे मैच की कहानी बदल दी। आशीष तानी ने पहले भारत को बराबरी दिलाई और फिर 53वें मिनट में अपना 3रा गोल दागकर हैट्रिक पूरी की। इस गोल ने भारत को 4-3 की बढ़त दिला दी और पाकिस्तान दबाव में आ गया। मैच खत्म होने से पहले तानी ने अपना 4था गोल भी दाग दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी। उनके 4 गोलों के दम पर भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया। आशीष टीम के प्रदर्शन से बेहद खुश नजर आए, उन्हें फाइनल भी जीतने का भरोसा है।
1: काफी अच्छा खेले हम लोग और मेरी टीम ने काफी मेहनत किया और एफर्ट मार रहे थे और आज हम लोग का सेमीफाइनल था पाकिस्तान के साथ और हम लोग उसमें विन किए हैं। अब हम लोग का फाइनल है कल, तो हम लोग उसमें भी विन करेंगे।
0: हालांकि खिताब के लिए टक्कर कांटे की होगी क्योंकि सामने मेजबान टीम होगी। सेमीफाइनल में जापान के खिलाड़ियों की मलेशिया के खिलाफ 8-1 की जीत से हौसले बुलंद होंगे, लेकिन भारतीय टीम अगर आज की तरह कल भी एकजुट होकर खेलने में कामयाब रही तो चैंपियन बनना मुश्किल नहीं होगा। ज्योत्सना पांडे, स्पोर्ट्स स्कैन।
2: तो हॉकी के मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ आज भारतीय खिलाड़ियों ने, युवा खिलाड़ियों ने बेहद दमदार प्रदर्शन किया और ये दिखा दिया कि हॉकी हमारी ताकत है। इस खेल में हमारा दबदबा क्यों है? क्योंकि जूनियर वर्ग से ही हम इतना शानदार प्रदर्शन करते हैं। और जब हॉकी की बात आती है तो जाहिर है उसके बाद बात क्रिकेट की भी आती है। आईपीएल के फटाफट अंदाज के बाद अब टेस्ट के जरिए भद्रजनों के इस खेल के सबसे कठिन और लंबे फॉर्मेट में भारतीय खिलाड़ियों की परीक्षा होने वाली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच कल से न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। भारतीय टीम करीब 6 महीने बाद कोई टेस्ट मैच खेलने मैदान पर उतरेगी। हालांकि हम आपको बता दें कि यह टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC का हिस्सा नहीं है, फिर भी मुकाबला जोरदार रहेगा। मुकेश से सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले भारत के पास अपने टीम संयोजन को आजमाने का ये अच्छा मौका है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि यशस्वी जायसवाल और उपकप्तान KL राहुल पारी की शुरुआत करेंगे। दोनों का हालिया फॉर्म शानदार रहा है। राहुल ने इस IPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए 593 रन बनाए थे। दूसरी ओर जायसवाल ने राजस्थान रॉयल्स के लिए 427 रन बनाए। नंबर 3 के लिए साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल के बीच कड़ा मुकाबला है। कर्नाटक के कप्तान पडिक्कल ने पिछले रणजी सत्र में 5 मैचों में 532 रन बनाए थे, जिसमें उत्तराखंड के खिलाफ 232 रन की पारी भी शामिल थी। दूसरी ओर IPL में 722 रन बनाने वाले साई सुदर्शन टेस्ट क्रिकेट में अभी तक खुद को पूरी तरह साबित नहीं कर सके हैं। फिर भी टीम इंडिया के चीफ कोच गौतम गंभीर ने संकेत दिया है कि साई सुदर्शन टीम की पहली पसंद होंगे।
4: He's only played what? Handful of test matches and he started his test career in England, which we all know is not the easiest place. And he's had a phenomenal run in IPL as well and we got to give him a fair chance.
3: Wicketkeeper बल्लेबाज ऋषभ पंत का नंबर 5 पर बल्लेबाजी करना लगभग तय है। हालांकि पंत के लिए इस बार IPL उनके करियर के सबसे खराब सीजन में से एक रहा है। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में पंत ने 2018 में शुरुआत के बाद से सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी टीम के 2 प्रमुख ऑलराउंडर हो सकते हैं। सुंदर ने पिछली टेस्ट सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नंबर 3 पर बल्लेबाजी की थी। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी लगातार अपनी गेंदबाजी में सुधार कर रहे हैं। उनकी मौजूदगी टीम को अतिरिक्त तेज गेंदबाज का विकल्प भी देगी। रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल को आराम दिए जाने के बाद भारत को लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर की तलाश है। टीम में नए खिलाड़ियों को भी जगह दी गई है। ऐसे में विदर्भ के हर्ष दुबे राजस्थान के मानव सुधार में

0: से किसी एक को मौका मिल सकता है। इसका संकेत टीम के सहायक कोच रियान टेन की बातों से भी मिलता है।
1: Look, I think the chance of both of them playing in the test are probably pretty small. We haven't finalized the combination, but I'd imagine, you know, Kuldeep will play and Washi will play, and then one of those two will play.
0: Washington Sundar के साथ कुलदीप यादव दो मुख्य स्पिनर होंगे। मानव के साथ हर्ष दुबे के भी अंतिम 11 में जगह बनाने की संभावना है। चीफ कोच गौतम गंभीर ने कहा भी है कि वे श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज से पहले चार स्पिनर को तैयार करना चाहते हैं।
2: This probably is the only test match where we can think of or looking at someone who could be a fourth spinner, because after this we go to Sri Lanka and we might have to carry four spinners as well there. So this is an ideal opportunity to try someone who could be a long-term fourth spinner as well.
0: Afghanistan ne 2018 mein Bengaluru mein Bharat ke khilaf apna pehla test match khela tha, jise mezban team ne do din ke bhitar hi jeet liya tha. Iske baad se June 2026 tak Afghanistan ne 11 aur match khele hain. Isi avadhi mein Bharat ne 67 test match khele hain. 2018 ki team se keval KL Rahul hi vartman Bharatiya test team ka हिस्सा है, जबकि अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्ला शाहिदी और बल्लेबाज रहमत शाह भी उस मैच में खेले थे। ये मैच जून के महीने में उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच खेला जाएगा और इसमें दोनों टीम की शारीरिक फिटनेस की भी कड़ी परीक्षा होगी। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
3: योगासन की बात हो गई, हॉकी की बात हो गई, क्रिकेट की बात हो गई और अब माइंड गेम शतरंज की बात। दरअसल ओस्लो में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने विश्व चैंपियन और हमवतन डी गुकेश पर क्लासिकल बाजी में शानदार जीत हासिल करके नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के खिताब की दौड़ में अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है। प्रज्ञानंदा इस जीत के बाद शीर्ष पर काबिज अमेरिका के वेस्ली सो से सिर्फ आधा अंक पीछे रह गए हैं। अब सिर्फ एक बाजी होनी है और वो निर्णायक साबित होगी। क्या कुछ रहा प्रदर्शन प्रज्ञानंदा का नवी बाजी में और क्या है संभावना फाइनल को लेकर, सुनते हैं विशाल से।
4: शह और मात के इस खेल में प्रज्ञानानंद ने काले मोहरों से खेलते हुए शुरुआत में ही बेहद मजबूत निम्जो इंडियन सैमिश सेटअप को चुना। दूसरी तरफ सफेद मोहरों से खेल रहे विश्व चैंपियन डी गुकेश ने शुरुआती चालों से आक्रामक शुरुआत की और बोर्ड के सेंटर पर नियंत्रण बनाने का प्रयास किया, लेकिन प्रज्ञानानंद ने सीधे तौर पर गुकेश की डबल सी पोन संरचना की कमजोरी को निशाना बनाया। इस मुकाबले में गुकेश की आक्रामकता का जवाब प्रज्ञानानंद ने संयम से दिया। वे लगातार विश्व चैंपियन की चाल का सटीक जवाब देते रहे। ऐसे में धीरे धीरे गुकेश की सफेद मोहरों के जरिए बनाई गई आक्रामकता खत्म हो गई। खेल की 34वीं चाल तक प्रज्ञानानंद ने पोजीशन पर पूरी तरह से नियंत्रण बना लिया था, जिसके बाद स्थिति को भांपते हुए गुकेश ने अपनी हार स्वीकार कर ली। प्रज्ञानानंद ने गुकेश को क्लासिकल बाजी में हराकर पूरे 3 अंक हासिल किए। इससे वे इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। 9वें दौर के बाद प्रज्ञानानंद 15 अंकों के साथ अमरीकी ग्रैंड मास्टर वेस्ली सो के 15.5 अंक से सिर्फ आधा अंक पीछे दूसरे स्थान पर हैं। इस जीत के बाद प्रज्ञानानंद ने अपनी 9वीं बाजी के बारे में बताया।
5: I was of course very happy with it because I mean tournament situation kind of demanded me to fight. I was looking forward to a fight and I knew that he'll go for it and I thought at some point he was probably playing too rash. I felt like I was just going for it in a position which I didn't really see a compensation for him. He sacked a rook and then I think I consolidated and converted.
4: फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा भी 14.5 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहकर खिताब की दौड़ में बने हुए हैं। जाहिर है अब बचे सिर्फ एक राउंड में 3 खिलाड़ियों के पास खिताब जीतने का मौका है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी खिलाड़ी खिताब जीतेगा वो पहली बार नॉर्वे शतरंज चैंपियन बनेगा। प्रज्ञानानंद निर्णायक दौर में जर्मनी के विंसेंट कीमर का सामना करेंगे, जबकि वेस्ली सो का मुकाबला अलीरेजा से होगा। महिला वर्ग में मौजूदा विश्व ब्लिट्ज चैंपियन बिबिसारा असा उबायेवा ने 1 राउंड शेष रहते हुए निर्णायक बढ़त लेकर खिताब अपने नाम कर लिया। उनके 16.5 अंक हैं। भारत की दिव्या देशमुख 10 अंकों के साथ 5वें और कनेरू हम्पी 9 अंकों के साथ सबसे नीचे 6ठे स्थान पर हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
3: फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में इस समय चेक गणराज्य के जैकब मैसी का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव के साथ चल रहा है। दूसरा सेमीफाइनल इटली के 2 खिलाड़ियों मेटियो अर्नाल्डी और फ्लेवियो कोबोली के बीच खेला जाएगा। इससे पहले कल पोलैंड की माया खोलिंस्का और रूस की मीरा एंड्रीवा ने अपने अपने मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट के मेन्स डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा कर्णन की हार के साथ ही भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। भारत की जोड़ी को मलेशिया के गोह जेफेई और नूर इजुद्दीन ने आसानी से 12-21, 10-21 से हराया। फुटबॉल की भी बात करते हैं। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले में कल भारतीय महिला टीम गोवा के मडगांव में बांग्लादेश से मुकाबला करेगी।

भारत क्षेत्रीय टूर्नामेंट में अपना रिकॉर्ड 6 खिताब जीतने की कोशिश करेगा। भारतीय टीम लगातार 5 खिताब जीतने के बाद पिछले 2 अवसरों पर फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई थी। बांग्लादेश ने 2022 और 2024 में दोनों मौकों पर नेपाल को हराकर ट्रॉफी जीती थी। श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज रोम डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले 4th एशियाई एथलीट बन गए हैं। उन्होंने कल पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में 92.62 मीटर का विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए जीत हासिल की। 23 वर्षीय पथिराज पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा भी 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले शीर्ष एशियाई थ्रोअरों में शामिल हैं। कोलमपुर में द्वितीय एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप में भारत ने महिला और पुरुष वर्गों में कांस्य पदक जीता। आज समाप्त हुई चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में कंबोडिया ने स्वर्ण और श्रीलंका ने रजत पदक जीता। महिला वर्ग में कंबोडिया ने स्वर्ण, मलेशिया ने रजत पदक जीता। प्रतियोगिता में एशिया के विभिन्न देशों के करीब 200 पैरा खिलाड़ियों ने शिरकत की। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी

0: इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी

0: अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
2: The negotiating team which came from
3: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
2: With Nepal, we have an expansive agenda.
3: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
2: Partnership that we have with Nepal.
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियोनो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक

0: की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage. Pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under 18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kaka Migahara in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth of the nation's green energy share. He said the current global energy crisis highlights the critical importance of self-reliance in energy. He said the world is gradually progressing towards a greener future and India is actively contributing to this transition.
2: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
2: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होंगी, साथ ही यहां सूरत मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है। ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत

0: रोशन के संगीत निर्देशन में ये थे मोहम्मद रफ़ी, जिनसे आप सुन रहे थे बहु बेगम फिल्म का एक गीत। गीत के रचनाकार थे साहिल लुधियानवी। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं चोरी चोरी फिल्म से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और साथियों की, लेकिन गीत हम आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: This June, make every drive feel smoother and every journey special.
2: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
1: Equipped with features like 360-degree camera, head-up display and safety through 6-year bags.
2: The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month.
1: Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
2: Hurry, offer still stocks last. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
3: Nexa.

लता मंगेशकर के गाए बॉबी फिल्म के इसी गीत के साथ अब आज का इंद्रधनुष कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। डीजे प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का साप्ताहिक कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

हमारे श्रोताओं की कार्यक्रम में भेजी गई ढेरों फरमाइशों में से आज के कार्यक्रम के लिए कुछ चुनिंदा गीतों की माला पिरोए मैं हूँ आपकी दोस्त अभिलाषा तिवारी। सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार। आज के कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ, फिल्म का नाम है फीकी पलकें। इस कार्यक्रम के लिए हमें फरमाइश भेजी है नोएडा उत्तर प्रदेश से राजप्रियांशु और नीरज, पोखरखाली अल्मोड़ा से गरिमा नीरू और इनकी सभी सखियां, और इसी गीत को सुनना चाहते हैं नैनीताल उत्तराखंड से रोहित प्रिया रीना और गर्वित। तो लीजिए प्रस्तुत है आज के कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आप सभी के लिए।

कार्यक्रम का अगला गीत जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजी, राहुल कुमार धनजी, विशाल कुमार धनजी, शीला और गायत्री धनजी, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद की पसंद पर। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार का गाया हुआ गीत, फिल्म का नाम है ब्लैकमेल।

आइए सुनते हैं SSJ विश्वविद्यालय से प्रवीण जोशी, सुशील जोशी, अजीत जोशी, सिद्धार्थ शाह, कमल बिष्ट, फ्रैंकलिन और इनके सभी दोस्तों की पसंद पर बंधन फिल्म का एक गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की। गीत के रचनाकार भैरव अरुण और संगीतकार आनंद राज आनंद।

कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, डुमराव से वली उल्ला अंसारी और असमानाज अंसारी, दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा, और सारिमपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी। आप सभी सुनना चाहते हैं अभिजीत और अलका याग्निक का गाया हुआ गीत। फिल्म का नाम है चलते चलते।

और अब आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, रूप कुमार राठौर, शंकर महादेवन और सोनाली राठौर का गाया हुआ। फिल्म का नाम है बॉर्डर। इस गीत को सुनने की अभिलाषा

सभी को लाला बाजार अल्मोड़ा से बाबा फरहान, संजू सामिया, मुमताज अमान, आफिया और इनके परिवार के सभी सदस्य, लक्सर से वेद प्रकाश, रामशंकर, सुनीता देवी और चुन्नू मुन्नू, और SSG विश्वविद्यालय से नीता जोशी, अरविंद पांडे, विनोद चंदोला, हरीश बिष्ट, करीमा पंत, योगेश, राजीव, पंकज और इनके सभी मित्र। तो लीजिए सुनिए आज के कार्यक्रम की ये अंतिम प्रस्तुति।

दोस्तों इनकी तो ये ही जाने, लेकिन हम कहीं नहीं जा रहे हैं और मिलते हैं आपसे अगले कार्यक्रम में। फिलहाल आपके अनुरोध पर कार्यक्रम से इस वक्त दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी कार्यक्रम में आपकी फरमाइश के कुछ और गीतों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

आपके अनुरोध पर अभी आप फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।

अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन से नगमा अभी आप सुन रहे थे। प्रोग्राम के आखिर में आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में बशीर बद्र की लिखी ये गज़ल।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को भी आप सुन रहे थे आराधना फिल्म में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था एसडी वर्मन ने। आइए सुनते हैं राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर का गाया हुआ गीत। गीत के रचनाकार आनंद बख्शी, फिल्म का नाम जूली।

आइए सुनते हैं हिमालय की गोद में फिल्म का गीत, आवाज मुकेश की। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और सरगम में बांधा है कल्याण जी आनंद जी ने।

मुकेश को अभी आप हिमालय की गोद में फिल्म में सुन रहे थे। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं हम साया फिल्म का गीत। गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने, लिखा है शेवन रिजवी ने और सरगम में बांधा है ओपी नैयर ने।

इनाम है उस फिल्म का जिसका गीत कार्यक्रम के समापन में हम आपको सुन पा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। SH बिहारी के लिखे इस गीत को सुरों में पिरोया है OP नैयर ने। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम की यह अंतिम प्रस्तुति।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के गाए ये रात फिर न आएगी फिल्म के गीत के साथ अब आज का सुगम संगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, शुभ रात्रि। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।